अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो जाता है भाई, यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती, यही तो माया है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है, वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे, यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है, वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है, यही तो है। संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है, और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती, यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं, दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरंसो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। पर दोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते, आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, इस संसार इसीलिए रचा है, सीखिए समझिए। चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई,

0: एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर्मन को दूषित कर बैठता है। वो आवश्यकता से अधिक चाहता है, और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे बिचारे तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रविदास जी कहने उनका संग करें, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करें, वार्ता करें, चिंतन करें, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस होना करें। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, ना अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब भीग। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की, चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही, वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। राका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये ले नहीं, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों, बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है आप पुनः यहाँ आने का कष्ट न करें। नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका बाका कहने लगे प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करें तहां आचार करें, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करें तो शुद्धता का ध्यान रखें, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागे हो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है।
1: कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को
0: अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन श्री।

कह रहे हैं रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझकर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एक आदर्श स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो झूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते हैं। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है, भोर भये ते सांझ धरे तक सेवा कोही नेम हमारो। प्रिया जी की जो टहल है जो सेवा है ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर हो जाई, हे मैं आपसे कह रहा था बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है,

ना हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विधि तोहे अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का

0: पीतल हो।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुवराज जी कह रहे उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे, पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करता है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। देवदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया। वो जल गया कहां? सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया, जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? बोले वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो दुर्दास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल बालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत भज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहां जहां जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्दास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आज हमारे पास बात करने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी दिल की बात कहने के लिए कोई क्यों नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आज पलक और शो लेकर आ गई हूँ नया नजरिया। आज बी के सिस्टर्स के साथ बात करेंगे अकेलेपन की। वेलकम मॉम।
1: ओम शांति।
0: ज्योति जी, पहले से ज्यादा हम आज हर चीज से कनेक्टेड हैं, फिर भी हमें अकेलापन महसूस होता है, ऐसा क्यों?
2: क्योंकि आज हम सबके बीच रहते हुए भी हम सबके साथ होते नहीं है
0: जी।
2: और इसका बहुत ज़्यादा हम देखते भी हैं कि पहले के समय में जब हम होते थे तो टेलीफोन्स होते थे, तो जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, मैंने यहाँ तक कि अगर अपने पास फ़ोन नहीं है तो हम दूसरों से भी कनेक्टेड रहते थे, पड़ोसियों से भी कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि उनके घर में शायद फ़ोन है और हमारे पास आना है तो उनसे कनेक्ट रहते थे। आज की डेट में क्या हो गया, आज घर में चार मेंबर हैं, चारों अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में जो है इंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में ही जी रहे हैं। तो आज जब एक परिवार के चार सदस्य ही आपस में बैठ के अकेले हैं, तो आप कितनी भी भीड़ में आप चले जाएं। पहले हम ट्रेन का सफ़र करते थे, मुझे याद आता है जब हम बचपन में जाया करते थे ट्रेन से, तो वहाँ पर क्योंकि फ़ोन तो होते नहीं थे, तो ट्रेन के सफर के दौरान ऐसा आपस में रिलेशन बन जाता था कि लास्ट तक जाते जाते लगता था कि फैमिली दूर हो रही है। और आज के टाइम में पड़ोसी भी क्या है ये पता नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी दुनिया एक डिब्बे में सीमित कर दी है। इसीलिए आज हम सबके बीच में भी रहते हुए हम अकेले हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं करते हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं, हम उनसे शेयरिंग कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं, और समय आने पर वो हमारे नजदीक नहीं होते हैं, तो इसीलिए आज हम अकेले हो गए हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: में खाना तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़, पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण, तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार। 89.6
3: रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: नया नजरिया विद आरजे पलक।
1: कभी कभी ना सबके बीच होते हुए भी मन के अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस होती है। शोभा जी, इसी को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लोगों के बीच रहकर भी हम अंदर से अकेला क्यों फील करते हैं?
2: ऐसा इसलिए होता है कि हम सब लोगों के बीच में तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में जो थॉट्स का जो तूफान चल रहा होता है उसमें हम उलझे हुए होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, उसका हम कहीं से सोल्यूशन नहीं पाते हैं। लोगों के पास बैठते हैं तो हम अपनी बात को पूरी तरीके से शेयर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो हम अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए होते हैं। तो उनके बीच रहकर भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि हमारे मन में तो वही सब बातें चल रही होती हैं। इसलिए हम लोगों के बीच में रह के भी अकेले अपने आप को महसूस करते हैं।
3: बिल्कुल सही बात है।
1: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

खोलो ना तुम दरवाजा पर आया नहीं रिप्लाई, और जो फ्रस्ट्रेशन में बोला आज वो बन गया मेरा स्टाइल। फिर दिल की आवाज सुनी सबने बिना कोई माइक, नाउ आई एम रेडी फॉर द फ्लाइट एंड आई एम रेडी फॉर द फाइट। सारे कमेंट सारे लाइक।

0: तुझे पलक। हम दूसरों से कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद से कनेक्ट होना भी भूल जाते हैं? ज्योति जी, क्या खुद से कनेक्शन कम होना भी लोनलीनेस की एक वजह हो सकती है?
1: अगर हम पहली सिचुएशन लेके कि कोई मेरे नजदीक नहीं है अपना, उससे भी हमें लोनलीनेस फील होता है, लेकिन वो इतनी देर तक का नहीं होता है, क्योंकि आजकल गैजेट इतने हो गए हैं कि दूर व्यक्ति भी दूर नहीं लगता है। लेकिन जो असली लोनलीनेस की बात है वो है हमारे अंदर का खालीपन। हम अंदर से खाली हैं, हम अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तलाश हम अपने अंदर ना करके हम बाहर घूम रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें खुशी शायद मेटलिस्टिक दुनिया में मिलेगी, और उन्हीं के अंदर ही हम अपनी खुशियों को तलाश रहे हैं, और इसी वजह से आज वो चीज़ें तो हम कहें कि कुछ समय के लिए है, जिसको अगर हम आध्यात्म की भाषा में कहें तो खत्म होने वाली चीज़ें, विनाशी चीज़ें हैं, उनके पीछे हम जा रहे हैं। लेकिन असली खुशी हमारी कहाँ है? क्या हम असली चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं? क्या मेरी खुशी की कोई वस्तु, व्यक्ति या जगह ही कोई जो कहीं आधार हो सकता है? उसका बेस ही हमने जब ऐसा लिया हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे पास रहेगा तो मैं खुश हूँ, किसी ने मुझसे मीठा बोला तो मैं खुश हूँ, किसी ने मेरी पसंद की चीज़ बनाई है तो ही मैं खुश हूँ, अगर नहीं है तो मेरा मूड ऑफ है। तो ये जब हमारी चीज़ें विनाशी चीज़ों पर हम रहते हैं और अंदर से अपने आप को जानते ही नहीं है कि मेरी खुशी की वजह क्या है, हम कहाँ ढूंढे, तभी जाकर के वो लोनलीनेस, उसी को ही खालीपन, एक्चुअल में लोनलीनेस वही है जो अंदर से हम बिल्कुल खाली हैं, अंदर से हमने अपने आप को किसी भी चीज से भरा नहीं है, लेकिन बाहर की चीजों से हम भरपूर हैं। तो अपने अंदर भरे सुख को, शांति को, और भरपूरता है, भरने की जरूरत नहीं है, भरपूरता है, बस उसकी तरफ नजर करनी है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: लोनली फील करना और अकेले होना शायद दोनों एक बात नहीं है। शोभा जी, अगर कोई अंदर से लोनली फील कर रहा हो तो रियल कनेक्शंस और इनर पीस वापस कैसे आ सकती है?
1: देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है अकेलापन और दूसरा होता है एकांत। आज के समय में हम अकेले तो हो गए हैं, अकेले कमरे में भी बैठते हैं, अकेले कहीं भी अपने आप को रखते हैं, लेकिन अकेले होते भी हमारे मन में बहुत सारे विचार या बहुत सारी बातें, और नहीं तो आजकल मोबाइल हम सबके हाथों में हो गया है, जिससे हम अकेले होते भी अकेले नहीं होते हैं। लेकिन अभी ज़रूरत है हमें एकांत में जाने की। एकांत का मतलब होता है एक के अंत में, अर्थात हम खुद अंदर अपने भीतर उतरें, अपने अंदर की जो कमी या कमजोरी है उसके बारे में हम खुद ही अपने आप को चेक करें। जब हम अपने आप को एक ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं तो हम अपनी कमियों को भी समझ पाते हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना है उसको भी हम देख पाते हैं, और फिर हम खुद से भी कनेक्ट होते हैं। जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने अंदर एक पीस जिसकी हम ज़रूरत महसूस करते हैं, एक एनर्जी जो हमें चाहिए वो हमारे अंदर धीरे धीरे आती है, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है एकांत की, अकेलेपन की नहीं, एकांत की।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: बी के सिस्टर्स, थैंक यू सो मच इतनी मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए।
1: ओम शांति।
0: दोस्तों, कभी कभी ना हमें ज्यादा लोग नहीं, बस एक जेन्युइन कनेक्शन चाहिए होता है, और सबसे जरूरी कनेक्शन खुद के साथ होता है। मैं हूँ आज पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे नए नजरिया में एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

89.6 रेडियो महारानी कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी, गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। तो भाई देखिए, अगर मैं बात करूँ ना इस वीकेंड की, तो वीकेंड हो चुका है खत्म, यानी कि इस बार भी अलार्म जीत गया और हम लोग हार गए। लेकिन भाई टेंशन नहीं लेने का, अंजलि ऑन एयर हो गई है और सुबह 7 बजे आई हूँ, 11 बजे तक आप सभी के साथ रहने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ और सबसे पहले ना ये मंडे ब्लूज को दूर करने वाली हूँ। ये जो बोरिंग वाला मंडे है ना, इसे इंटरेस्टिंग वाला मंडे बनाने वाली हूँ। तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, और बहुत सारी बातें हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ना गर्मा गर्म सिर्फ हो ही जाए ये अदरक वाली चाय की, बिकॉज आधा मूड ना ये खुद ठीक कर देते हैं। तो आधा काम करेगी ये अदरक वाली चाय और आधा काम करेगी अंजलि ऑन एयर। और भाई इसी के साथ ना एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज गाने में बहुत ही बेहतरीन बजाती हूँ।

यार देखो मंडे की ना यही खासियत है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेजी लेजी सा फील होता है। और बता यही चीज ना मौसम ने भी बोल दिया, मौसम ने बोल दिया है कि आज मैं अपने मूड के हिसाब से चलूंगा, जो करना है कर लो। यानी कि अगर मैं आज फरीदाबाद की टेम्परेचर की बात करूँ तो भाई हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 33 डिग्री, इसी के साथ मिनिमम होने वाला है 27 डिग्री और थंडर स्टॉर्म के चांसेस है, मतलब कि आपको अम्ब्रेला घर से लेकर निकलना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है बारिश कम हो ज्यादा हो, ये तो भाई मौसम के मूड पर डिपेंड करता है ना। लेकिन आप अपनी तरफ से अम्ब्रेला और रेनकोट जरूर कैरी करके चलिएगा, और देखिए जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना, किसी को देखे या ना देखे, इस मौसम को जरूर देख लिया करो, क्योंकि कई बार ना ये हमें ऐसे इशारे कर रहा होता है कि यार घर से बाहर निकल फिर देख तू बेटा। तो भाई देखिए ऐसे चैलेंजेस से बचने के लिए ना क्या करना है भैया, अपने साथ एक अम्ब्रेला जरूर कैरी करके चलना, और अब घर से बाहर आ ही गए हो तो मौसम एंजॉय करो, और सुनते रहो ये ट्रैक जो है खास आप।

0: समाज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: डॉक्टर कॉलिंग।
3: नमस्ते, मायसेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। ओवर 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। सो हमारी डेली डाइट में न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है। अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिंस एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है।
2: डॉक्टर

हेलो हेलो जी, तो देखिए बातें तो बहुत सारी ऑब्वियसली यार, मैं यहाँ पर आती हूँ चार घंटे के लिए, बातें तो करूंगी ना, लेकिन बातें करने से पहले चलो जान लेते हैं कि आज कैलेंडर की तारीख क्या कहती है। यानी कि भाई टाइम हो गया तारीख पर तारीख जानने का, और आज का दिन ना बड़े इंटरेस्टिंग से है। पहली बात तो 24 अगस्त है आज, और आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल नाइफ डे। अब अंजलि आए और कुछ अतरंगी चीजें ना लाए, ऐसे कैसे हो सकता है। अब नाम सुन के थोड़ा सा डेंजरस तो लग ही रहा होगा कि यार अंजलि सुबह क्या चाकू वाकू की बातें कर रही हो यार, लेकिन टेंशन नॉट, इसका कनेक्शन किसी क्राइम से नहीं है बल्कि है नाइफ की हिस्ट्री से। तो वही नाइफ जो हर किसी के घर में होता है, लेकिन हम आज का डे क्यों सेलिब्रेट करते। ये डे डेडिकेट किया जाता है क्राफ्ट्समैनशिप और एवरीडे यूज को। सो देखिए अगर बात करें ना नाइफ की, तो इंसान के पास सबसे पुराना जो टूल था ना वो नाइफ माना जाता है, और पहले के जमाने में तो उसका इस्तेमाल हंटिंग और सर्वाइवल जैसी चीजों में किया जाता था, लेकिन आज के जमाने में इसका यूज हम किस चीज में करते हैं, सब्जी काटने में, केक काटने में, और भाई कुछ लोग तो पिज्जा भी काट देते हैं। तो देखा इतने स्ट्रॉन्ग टूल का इस्तेमाल हम आज किन चीजों में कर रहे हैं। तो देखिए भाई वक्त बदल गया और जज्बात भी शायद बदल ही गए हैं, और ना धीरे धीरे हर किसी के जज्बात बदल ही जाते हैं, तो फिर भी एक टूल है, तो चले इस टूल को भी सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। आप सभी को आज नेशनल नाइफ डे की बधाइयां दे दूं क्या? अगर देखिए बधाई देती हूँ तो फिर तो आपको केक काटना पड़ेगा, और अगर नहीं देती हूँ तो फिर भी अपने घर में जितने नाइफ है ना उन्हें संभाल कर रखिएगा, और साथ ही एंजॉय कीजिए विद योर नाइफ, और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स, मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

देखिए, अगर बात हीरो बनने की है ना, तो सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि टैलेंट भी चाहिए भाई। और ये बता दिया है हमें इस एक्टर ने, तो आज रेडियो महारानी पर बॉलीवुड बस बना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है सुबह एक ऐसे एक्टर का जो अपनी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के लिए जाना जाता है। सो आज हम हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्टर विनीत कुमार सिंह का, जिन्होंने मुक्केबाज हो या फिर गैंग्स ऑफ वाजीपुर, उन्होंने हर परफॉर्मेंस को ना बहुत ही दमदार तरीके से निभाया और ऑडियंस का दिल जीता है। हर बार आते हैं अपना एक नया अंदाज लेकर और अपने फैंस के दिलों पर जगह बना लेते हैं। तो देखिए, कुछ इसी तरह के एक्टर हैं ये, तो चलिए फिर इन्हें विश कर देते। सो रेडियो महारानी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे विनीत कुमार सिंह। आप ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, अपने फैंस का दिल जीतते रहे और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: Punjabi pop culture runs through the blood.
1: हेलो हेलो जी, तो देखिए भाई, फरीदाबाद से निकल कर चलते हैं थोड़ा सा बाहर। और जैसे ही मैं बाहर गई ना, तो मुझे ये पता चला कि जो चीजें हम एज इंडियन सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और जिनके हमारी बहुत ही यूनिक नाम भी है, उन्हें ना बाहर के लोग बहुत ही पसंद करते हैं। अब बात कर लो मम्मी की थाली की। हाँ, वही किचन वाली स्टील वाली थाली जिसमें हम ना सालों से दाल चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल और कुछ भी खा लेते हैं, और कई लोग तो ना उसमें चाय भी पी लेते हैं। बिकॉज यार, हम इंडियन ना बहुत जुगाड़ी होते हैं, और साथ ही ना कभी कभी इतना आलस भरा होता है कि कौन जाए ग्लास लेने। ये जो थाली है ना, मल्टीपर्पज वाला काम करती है। लेकिन जिस थाली को हम बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, और जिसका इस्तेमाल करते करते हम इतने ज्यादा बोर हो गए थे ना कि मम्मी को ये बोला कि यार अभी से रिजेक्ट कर दो, और ये जो फैंसी क्रॉकरीज आ रही है ना मार्केट में वो ले आओ। लेकिन आपको बताए, एक विदेशी महिला अमेरिकन विमेन ने स्टोर पर एक क्रोम प्लेट्स को देखा, और ना उसका दिल उस प्लेट पर आ गया। और उसका प्राइस पता है क्या था? 800 से 1500 रुपए पर प्लेट। जैसे उस लेडी ने देखा कि भाई ये तो बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही, तो उन्होंने बोला मुझे दे दो। तभी दुकानदार ने बोला, मैडम जिसे आप क्रोम प्लेट समझ रही हो ना, ये हमारे घर की थाली है और हम सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, यानी कि इतनी हाइप बना दी उस थाली की जिस थाली को हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, मम्मी के दहेज में ना यही थालियां मिली थी, और आज तक मेरे घर में यही थालियां चल रही है। मेरी मम्मी इनको रिप्लेस ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े हैं, जिसकी वजह से ना मेरा घर कभी एस्थेटिक नहीं बन पा रहा। खैर देखिए, मेरा घर तो स्थैटिक नहीं बन पाया, लेकिन ये जो अमेरिकन लेडी है ना, ये अपना घर जरूर स्थैटिक बना लेंगे, वो भी हमारी थाली के साथ। और तब तक ना एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज गाने में बहुत ही बेहतरीन बजाती हूँ, तो भाई सुनने पड़ेंगे ना ये गाने। तो सुनिए, मिलते हैं उस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

करके ज्यादा बात नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं सीधा बिजनेस की। आज का बिजनेस प्लान लेकर आ गई हूँ, यानी कि आ गई हूँ लेकर आज का बिजनेस मंत्र। और हम जेंजीज की अगर बात करूँ ना, सिर्फ जेंजीज नहीं, आजकल तो हमारी मम्मी वाली जनरेशन भी ना इंस्टाग्राम पर ही नजर आती है। हमसे ज्यादा भाई वो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, और ऐसे में अगर उन्हें दिख जाते हैं ना कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो वो फटाफट से बाय कर लेते हैं। ये भी नहीं देखते कि ऑथेंटिक साइट है या नहीं। कल परसों पता है मेरी मम्मी ने क्या किया, इंस्टाग्राम पर एक लिंक आया, उन्होंने क्लिक कर दिया और बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था। और मेरी मम्मी बेचारी इतनी भूली है, उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। वो प्रोडक्ट ना अभी तक ऑन द वे ही है, पता नहीं आएगा या नहीं भी आएगा। खैर देखिए, इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ और बिजनेस मंत्रा की बात कर रही हूँ, तो भाई सिंपल सी बात ये है, आपके एरिया की जितनी भी दुकान फेमस है ना, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर नहीं है ना, तो फटाफट से इंस्टाग्राम पर ले आओ। तो देखिए, आज का बिजनेस आइडिया यही है, जितने भी आपके एरिया के जितने भी लोकल शॉप सेलो और जितने भी कैफे, उनके रील्स बनाइए, सोशल मीडिया पर उनका कंटेंट बनाइए, उनका एक अलग से पेज बनाइए, उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। फिर देखिएगा जो सेल है ना, वो बहुत अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो आप अपना मंथली चार्ज कर सकते हैं जितनी सेल्स आती है उसके अकॉर्डिंग, और इससे पता क्या होगा, इससे उनका प्रमोशन हो जाएगा। जो उनकी ऑफलाइन दुकान थी ना, बेसिकली से ऑनलाइन तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, और जो भी मार्जिन होगा वो आपको रखना है। सिंपल सा आज का बिजनेस मंत्र है, इस बिजनेस मंत्र को अपनाइए और फिर देखिएगा पैसा ही पैसा। तो ये था आज का बिजनेस मंत्र, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see bahut sare log social media follow karte hain, bahut sare trends follow karte hain, bahut sare influencers or celebrities ko follow karte hain aur crash diets karte hain, jo ki unki body ke liye bilkul bhi sehatmand nahi hai. Jo dusre ki body pe suit kar raha hai, wo आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कंफर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

हमेशा बताती हूँ ना, स्पोर्ट्स की जब बातें करती हूँ, किसी ने चौका लगाया, किसी ने छक्का लगाया और किसी का फुटबॉल गोल गिरा। लेकिन आज ना मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे स्पोर्ट्स अपडेट की, जिसे सुनने के बाद ना आपका दिमाग भी ऐसे हो जाएगा कि कैसे बैलेंस करूँ और ये चीज बैलेंस हो कैसे रही है। तो फिर चलिए फटाफट से फरीदाबाद से निकल कर ना कहीं दूर चलते हैं। तो देखिए भाई, केरला के एक साइक्लिस्ट है जिनका नाम है सनीद बीना। वो पता क्या कर रहे हैं इन दोनों? वो कर रहे हैं फ्रंट व्हील वाली साइकिल पर 11,000 किलोमीटर की जर्नी। और ये अगर जर्नी की बात करूँ तो अब आप ये पूछेंगे कि इसमें खास क्या है। तो इसमें खास ये है, ये पूरी जर्नी सिर्फ और सिर्फ एक ही व्हील पर की जाएगी। यानी कि साइकिल के दो पहिए होते हैं जिसमें से सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा एक पहिए का। और अगर डिस्टेंस की बात करूँ कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं केरला से नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप तक। तो देखिए, जहाँ हम लोग ना दो पैरों पर भी सही से नहीं चल पाते ना, वहाँ ये भाई साहब एक पहिए पर चल रहे हैं। तो भाई देखिए, कमाल का बैलेंस था। और ना हमें इनसे सीखना चाहिए कि लाइफ में किस तरह से बैलेंस बनाना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ ना इस जर्नी की, तो ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है बल्कि इनका मिशन है से नो टू ड्रग्स। यानी कि इन्होंने एक टारगेट बना लिया है और टारगेट ये है कि ये मैसेज यूथ तक पहुंचना चाहिए। और पहुंचाने के लिए इन्होंने जरिया चुना है साइकिल को। तो अगर मैं सनीत की बात करूं, पहले भी ये कश्मीर टू केरला राइड कर चुके हैं और अब फिर से जा रहे हैं नेपाल। सो इनका हौसला बढ़ाने के लिए ना हमें इन्हें चीयर करना तो बनता है ना। तो देखिए, अगर आपको कहीं रास्ते में मिल जाते हैं ना, तो इन्हें चीयर कीजिएगा और इनका हौसला बढ़ाइएगा। और साथ ही से नो टू ड्रग्स, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। बिकॉज हमारी यूथ हमारा फ्यूचर है। हमारा देश आगे बढ़ेगा तभी जब हमारा यूथ हेल्दी होगा, और हमारा यूथ तभी हेल्दी होगा जब वो इन टॉक्सिक चीजों से दूर रहेगा। सो सिंपल सा फंडा है, आज ही अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाइए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और साथ ही गाने सुनिए। ये क्योंकि गाने ना हमारे मूड को जो है अच्छा कर देते हैं। और जब गाने अच्छे आते हैं ना, तो मैं कहीं ना कहीं रुक जाती हूँ, फिर मेरा बात करने का मन नहीं करता। तो भाई एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं ना इस म्यूजिक ब्रेक।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट। सबवीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी, और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

कई लोगों में ना एक चुल होती है, और वो चुल ये है कि उनसे अपनी हॉबी भी नहीं छोड़ी जाती और जॉब भी नहीं छोड़ी जाती। जॉब करनी इसलिए बिकॉज भाई ये गरीबी है, ये पापी पेट का सवाल है, और इस पापी पेट को ना पिज्जा बर्गर और गार्लिक ब्रेड तो चाहिए ही होती है, और हॉबी तो दिल, ये जो दिल है ना उसके अंदर बैठी हुई है हॉबी। तो भाई दोनों चीजें छोड़ी नहीं जा सकती, तो अब आपको करना क्या है? तो एक गोल्डन रूल है हमारे जितने भी कॉर्पोरेट पगलूज है ना, अगर आप चाहते हो ना कि ये जो आपका दिली तमन्ना, ये जो आपकी हॉबी है वो जिंदा रहे, तो सबसे पहले ना अपने बॉस को इम्प्रेस कर दो। अगर आप गाना गाते हो ना तो बॉस को सुबह शाम जाके गाने सुनाओ। अगर आप डांस करते हो तो बॉस के सामने ठुमके लगाओ। और अगर आप पेंटिंग करते हो ना तो भाई सबसे बड़ी चीज बॉस का फेस पेंट कर दो। नहीं, बॉस का फेस पेंट नहीं करना, कैनवस पे भाई। तो देखिए भाई, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सोशल स्यापा आजकल लेकर आ गए, तो आज का स्यापा ना हमें ये बताता है, ये हमें ये बताता है कि आप किस तरह से अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो। तो भाई जिस बंदे ने गोल्डन रूल्स बताया ना, उसने ये बताया कि अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने हॉबी को जिंदा रख सको ऑफिस में, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना काम स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि जब भी आपका बॉस आपको टारगेट करे ना तो आपके काम के ऊपर तो कतई ना कर पाए। और इसी के साथ आपको कम्प्लीट करना है आपका KRA और KPI, सो दैट कि आपका टारगेट, आपकी परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट हो और बॉस को ना कम्प्लेन करने का मौका ही ना मिले। जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ आई है ना, वो ये है कि अपना सिर्फ काम पूरा करो यार। अगर वो काम पूरा नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली यार बॉस गुस्सा करेगा। ये सेम ना उसी स्टूडेंट की तरह जो बेचारा बैक बेंचर है और अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते और एक्सपेक्ट करता है कि स्कूल में टॉप कर ले। तो भाई देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी हॉबीज को अगर जिंदा रखना है ना बॉस, अपना काम पूरा करो। और साथ ही सुनते रहो, ये ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो जी। तो देखिए, अब वक्त आ गया है भाई की पॉकेट मनी खाली कराने का। और जब मैं पॉकेट मनी की बात करूँ ना, स्पेशली भाई की, तो आप समझ ही गए होंगे रक्षाबंधन की बात करूँ तो। देखिए, रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन भाई की पॉकेट खाली कराते वक्त ना अपनी पॉकेट का ख्याल जरूर रखिएगा, बिकॉज रक्षाबंधन पर गिफ्ट भेजना है, राखी ऑनलाइन ऑर्डर करनी है या फिर भाई बहन को सरप्राइज देना है। तो बस एक मिनट जरूर याद रखिएगा, बिकॉज फेस्टिवल के टाइम में स्कैमर्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव। तो वही साइबर क्रिमिनल्स फेक राखी ऑफर्स, गिफ्ट वाउचर्स, कैशबैक और डिलीवरी लिंक्स के नाम पर व्हाट्सएप और साथ ही मैसेज भी भेज सकते हैं, जहां पर लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी राखी गिफ्ट रेडी है, बस डिलीवरी चार्ज पे कीजिए और लिंक पर क्लिक करते ही गेम शुरू। तो आपको बताना आपको करना क्या है, जब भी आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं उस ऑर्डर को क्रॉस चेक जरूर कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि ऑथेंटिक सोर्स से है, वेबसाइट से जाकर ही ऑर्डर प्लेस कीजिएगा और अगर हो सके ना तो यूपीआई से बचिएगा, कैश ऑन डिलीवरी कीजिएगा और अपना ओटीपी बिना किसी को चेक किए मत दीजिएगा। तो बस इस बार रक्षाबंधन का सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है, गिफ्ट लेने के चक्कर में अपना अकाउंट खाली मत कर दीजिएगा, अननोन लिंक्स पर क्लिक मत कीजिएगा, कोई भी ओटीपी मत शेयर कीजिएगा और साथ ही किसी के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मत शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

लगता है ये जो पूरी जिंदगी है ना अपनी, जो सपने देखे थे कि बहुत कुछ करेंगे लाइफ में, लगता है वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा टाइम कहाँ जा रहा है? सारा टाइम जा रहा है हमारे ट्रेवल पर। और अगर खासकर उन लोगों की बात करूँ जो फरीदाबाद से जाते हैं बेचारे गुरुग्राम सुबह सुबह ट्रैफिक में, अगर आप मेट्रो से जा रहे हो ना भाई, 3 घंटे लगते हैं बेचारे। जिंदगी में क्या देखा इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ हॉर्न के साउंड सुने हैं जिंदगी में इन्होंने। और लगता है ये सारी तकलीफें देखने के बाद ना भगवान ने बोल दिया बेटा तथास्तु, यानी कि अब जो ये तेरा सपना है ना ट्रैफिक में खड़े होने वाला, अभी तेरे को एक्चुअल में सपना लग गया, क्योंकि अब तेरे को ट्रैफिक ही नहीं मिलेगा। अगर

सोचो कभी आप लेट हो रहे हो और कोई आपको बोले कि भाई छोड़ना भाई मेट्रो वेट्रो, सीधा ना हवाई टैक्सी से चलते हैं, तो कैसा रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन ना कुछ टाइम बाद शायद सच हो जाएगा, बिकॉज दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में ट्रैफिक प्रेशर कम करने और साथ ही कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए फ्यूचर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन के तौर पर एयर टैक्सी और एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने का प्रपोजल रखा गया है। और इतना ही नहीं भाई, साथ ही यमुना के थ्रू इनलैंड वाटर वे सिस्टम का आइडिया भी प्लान में है। तो देखिए भाई, प्लान तो बहुत ही अच्छा है, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो बल्ले ही बल्ले, और अगर नहीं हुआ तो ट्रैफिक जिंदाबाद। तो भाई देखिए, और होप फॉर दी बेस्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पता एक दिन आप मुझे हवाओं में सुन रहे हो, यानी कि आप सुन रहे हो मुझे एयर टैक्सी में, और मजे वाली बात तो है। तो चलिए ऐसी गुड न्यूज लेकर आती रहूंगी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, बिकॉज अब वक्त हो गया ना अच्छे अच्छे गाने बजाने का, तो एंजॉय कीजिए ना ये ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी, देखिए बातें तो मैं बहुत सारी करती हूँ, लेकिन अब फाइनली ना टाइम हो गया है दिमाग की बत्ती चलाने का। तो आज दिमाग की बत्ती चलाने के लिए ना मैं पहेली लेकर आ गई हूँ। तो चलिए पहले जानते हैं आज फरीदाबाद की पहेली आखिर है क्या। पहेली है उस पुराने टावर की जो महल नहीं था बल्कि पुराने जमाने में रास्ते की दूरी बताने का काम किया करता था। और ये जगह आपको अपने फरीदाबाद में ही मिलेगी। अगर आपने फरीदाबाद को बहुत ही अच्छे से जाना है ना, तो आप इस जगह को जरूर जानते हैं। तो करना क्या है, फटाफट से जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना मैसेज भेजिए और देखते हैं भाई कितना अच्छे से जानते हो फरीदाबाद को। और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

0: प्यार करते हो मुझसे? 7 साल लड़के एडजस्ट किया, इसका यह मतलब नहीं कि सारी जिंदगी एडजस्ट कर पाएंगे। शादी के बाद ब्रेकअप नहीं, डिवोर्स होता है। मैं हमेशा तुमसे ब्रेकअप करती थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुम हमेशा मेरे लिए परफेक्ट थे, शायद मैं ही तुम्हारे लिए गलत।
1: अगर मैं ब्रेकअप करूंगा तो तुम मुझे रोकोगे?
0: तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं?
1: तुम क्या चाहते हो?
2: तुझ पे ही ऐतबार है, तू ही मेरा राजदार है।
0: तुम प्लीज यहां से चले जाओ मुझे।

0: गणेश,
1: वो निखिल भागा जा रहा है और तू यहाँ बैठा है।
0: आप शांति से बैठ जाइए ना, वो घूम फिर के इसी मंडप में आ जाएगा, पर वैसे भी इस बला से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, बैठ जाइए।
2: By the way, he is joining the IPS.
0: अभी नहीं, शादी के बाद।

0: आ रहे हो या जा रहे हो?
1: मन चला मन चला मन चला मन चला
2: फिलहाल तो फंसा हूँ।

सेंसेशन हो रहे हैं, बॉडी में ठंडे ठंडे पानी के फुहारे फूट रहे हैं, साइमल्टेनियसली गरम गरम के फूट रहे हैं। दिस टाइम इट्स रेज टू द पावर एंड दे गो टू इंफिनिटी।

डो यू नो से हम जिंदगी में सीधा कब डिड यू नो पर आगे पता ही नहीं चला। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे डिड यू नो फैक्ट की जिसे सुनने के बाद ना कुछ नहीं अच्छा लगेगा, बस जिसे सुनने के बाद ना आपको एक फैक्ट पता चल जाएगा बेसिकली, और कुछ भी नहीं। तो भाई देखिए, आपने देखा होगा अक्सर हमारा फोन साइलेंट होता है, नोटिफिकेशन का भी पता नहीं चलता, फिर भी ना हमारा दिल और दिमाग कहता है कि फटाफट से जाके फोन चेक करो, पक्का कुछ हुआ है। और कुछ हुआ भी होता है, यानी कोई नोटिफिकेशन आई भी होती है, कोई कॉल भी आया होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भाई कोई आप जादूगर तो हो नहीं, ये आखिर चीजें हो कैसे रही, यानी कि हमारे दिमाग को आखिर हुआ तो हुआ क्या है। सो भाई ये जो हैबिट है, इस हैबिट का कनेक्शन होता है अनसर्टिनिटी और रिवॉर्ड से। सो देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब हमारा फोन हमसे दूर होता है, साइलेंट पर होता है और हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे फोन पर कुछ आया ही नहीं, तो हमारे दिमाग ना हमें सिग्नल देता है कि जाकर फोन चेक करो फटाफट से। तो जब हम जाकर देखते हैं ना कि एक्चुअल में कुछ आया, तो हमें लगता है कि ओ माय गॉड, हमारी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इंट्यूशंस का काम नहीं है, ये हमारे दिमाग की चुल है। जब हम बाइबल मोटिवेट करते हैं कि जाओ भाई जाकर देखो, बेसिकली हमारा दिमाग ना हमारा टाइम वेस्ट कराता है। तो हर टाइम हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, और हर टाइम अपने दिल की भी नहीं सुननी चाहिए हमेशा। ये जो दिल है ना, बहुत गड़बड़ कराता है और फिर बहुत रुलाता भी है। लेकिन ये जो दिमाग है ना, कई बार ना फंसा भी देता है। तो यार सुने तो सुने किसकी, फिर वही वाली बात है ना, जिंदगी में आए हैं तो जीना पड़ेगा, दुख अगर मिला है तो वो लेना पड़ेगा। ये देखो लिरिक्स नहीं थी, ये तो मैंने खुद से गाया है। सो बस यही बोलना चाहती हूँ कि फटाफट से अपना फोन चेक कर लो, क्या पता आपको भी कोई नोटिफिकेशन आई हो, फिर क्रेडिट दे देना मुझे। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, गुड मॉर्निंग मैं कर चुकी हूँ फरीदाबाद वालों, लेकिन अब टाइम हो गया हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग करने का, यानी कि अब मैं लेकर आ गई हूँ एक गुड न्यूज और गुड अपडेट। सो भाई देखिए, फरीदाबाद वालों, अपने शहर की एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ, तो नोट करना तो बनता ही है ना। और इस अपडेट का कनेक्शन है सीधा हमारी रोड्स और हवा से, यानी कि CAQM ने डिसाइड किया है कि 1 जुलाई 2027 से फरीदाबाद समेत हाई व्हीकल डेंसिटी वाले NCR डिस्ट्रिक्ट्स में नए लाइट गुड्स व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलाउड होगी। इसका सिंपल सा मोटिव है व्हीकल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, यानी कि फ्यूचर में फरीदाबाद की रोड्स पर डिलीवरी और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और अब देखना ये है कि 2027 तक फरीदाबाद की रोड्स पर ट्रैफिक कम होता है या बस इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए नई लाइन लगती है। और इसी के साथ ना एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज गाने बहुत ही हसीन हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। और मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हाँ जी, देखिए बातें बहुत सारी करती हूँ और बातें करते करते ना कभी कभी आपके दिमाग की बत्ती भी चला देती हूँ, यानी कि लेकर आती हूँ फरीदाबाद की पहेलियाँ। और आज भी लेकर आई थी, और आज मैंने बात की थी पहेली में उस पुराने ढाबे की जो किसी महल का हिस्सा नहीं बल्कि रास्ते की दूरी बताने का काम किया करती थी, और जिसके मुझे बहुत सारे जवाब आए, यानी कि मुझे आए बहुत सारे मैसेजेस। तो चलिए भाई, पहले मैं जवाब आपको बता देती हूँ। तो जो सबसे पहला जवाब आया था वो आया था अंशिका का फ्रॉम फरीदाबाद। वही अंशिका ने बताया है कि जो पहेली आपने अंजलि पूछी है ना, इसका आंसर है कोस मीनार। तो देखिए बहुत ही इंटेलिजेंट है अंशिका, बिकॉज इस पहेली का जवाब ना मुझे खुद नहीं पता था। तो भाई थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हिस्सा बने रहिएगा रेडियो महारानी के सेगमेंट का जिसका नाम है फरीदाबाद की पहेली। तो अगर मैं इस कोस मीनार की बात करूँ तो आखिर होता क्या है? तो मुगल पीरियड में कोस मीनार एक तरह का माइलस्टोन हुआ करता था जो फरीदाबाद के पुराने दिल्ली आगरा रूट पे था, जिसकी वजह से इसके कुछ हिस्टोरिकल रिमेन्स आज भी मिलते हैं जो हमें एक तरह का डिस्टेंस बताते हैं। तो देखिए था ना ब्रेन रोट करने वाली चीज, और इसी तरह की दिमाग की बत्ती जलाने वाली चीजें मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। लेकिन अभी चलती हूँ और एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है, वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज में मन नहीं लगता, वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे, हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट से मिले। डॉक्टर कॉलिंग।

बातें तो बहुत सारी हुई है, लेकिन अब बात आती है फिट फरीदाबाद की। तो भाई ये कैसे पीछे रह सकता है। आज मैं आपके लिए फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई, और फिटनेस वाला फंडा ना सिर्फ ये नहीं बताता हमें कि वर्कआउट कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, लेकिन ये फिटनेस वाला फंडा हमें ये भी बताता है कि जो हम डेली कंज्यूम करते हैं ना, आधे लोग तो समझ ही गए होंगे एनर्जी ड्रिंक्स की मैं बात कर रही हूँ, वो किस लिमिट तक करनी है। बिकॉज आज बात करने वाले हैं एनर्जी ड्रिंक्स की, क्योंकि जब भी हमें थकान लगती है, लो एनर्जी फील होती है, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत जाकर एनर्जी ड्रिंक उठा लेते हैं। और जैसे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना, ऐसे लगता है टुनटुन मौसी वाले लड्डू खा लिया, इतनी एनर्जी आ जाती है बॉडी में। तो पता है डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं इनका एक्सेसिव कंजप्शन किडनीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकता है। बिकॉज इसके अंदर ना कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हाई कैफीन हो गया, शुगर हो गया, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई जितने भी हेल्दी एडल्ट्स हैं ना, तो आपके लिए कभी कभार स्टैंडर्ड एनर्जी ड्रिंक काम कर सकती है, लेकिन डेली नहीं। और इसको डेली हैबिट मत बनाइए, खासकर अपने हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रेशन के लिए आपको पता है ना क्या करना है, हाइड्रेशन के लिए आपको अपनी स्मार्ट चॉइसेस ही ऑप्ट करनी है। जैसे कि नॉर्मल पानी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, या फिर आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, ग्लूकोज भी पी सकते हो। तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, लेकिन एनर्जी ड्रिंक से दूर रहिए। तो अगली बार जब भी एनर्जी ड्रिंक खोलने का मन करे ना, तो एक सेकंड जरूर सोचेगा और याद कर लीजिएगा मेरी आज की बात है। और इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहाँ मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स, मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटेजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, बहुत सारी बातों के बाद ना अब फाइनली टाइम हो गया ये जानने का कि आज आखिर टिफिन में घर से आया क्या। और आज वाले टिफिन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज वाला टिफिन ना मैंने खुद ने बनाया है। आज मैं पास्ता लेकर आई हूँ, और जब मैं पास्ता लेकर आती हूँ ना तो मेरा मन ना गार्डन हो जाता है, क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जो मेरे को आती है बनानी और जिसे मैं शिद्दत के साथ बना सकती हूँ। खैर देखिए, मैंने तो बता दिया कि मैं आज अपने टिफिन में क्या लेकर आई हूँ। अब वक्त है आपका, तो आपको पता है ना कहाँ जाना है। फटाफट से जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर जरूर अपने मैसेजेस भेजिएगा कि आज आपके टिफिन में क्या खास है, क्योंकि ना दिन को ना खास सिर्फ एक ही चीज बनाता है, वो है खाना। तो अगर खाना अच्छा होगा ना तो मूड अच्छा होगा, और अगर मूड अच्छा होगा ना तो आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। देखा कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा जरूरी है। और फिलहाल वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज जाऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, लेकिन तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। लेकिन तब तक पता है ना आपको क्या करना है, आपको करना है ये गाना एंजॉय, और बने रहना है रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

उसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह हम बात करते हैं आज सिनेमा के गलियारे में बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी के बारे में, जो लास्ट वीकेंड रिलीज हुई कहानी इस वक्त कौन से पायदान पर कितना कमाल मचाती नजर आ रही है। सिनेमा के गलियारे से और होंगी चर्चाएं, कुछ नई कहानियों की जो रिलीज होने को तैयार, कुछ सिल्वर स्क्रीन पर तो कुछ का होगा आगाज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। हिंदी पट्टी से लेकर के साउथ इंडस्ट्री देखे स्टार्स की कहानी, तो कहीं होगा हॉलीवुड का एक्शन और सस्पेंस का धमाल, तो चलेगा जादू पंजाबी गानों का भी। ये सारी चर्चाएं और सिनेमा के गलियारे से मैं करने वाला हूं, लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले, यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

खाने की फिल्म ही फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से वीर पहाड़िया के बारे में। वीर पहाड़िया अगली फिल्म प्रेम कीटाणु अनाउंस हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमा घरों में आएगी। वीर पहाड़िया और अपार शक्ति खुराना साथ होंगे, जहां साथ में आफिर सैयद, राकेश बेदी और निखिल विजय भी नजर आएंगे। अपूर्व सिंह करकी, जिन्हें सिर्फ एक बंदा काफी है और एस्पिरेंट्स के लिए जाना जाता है, कहानी को डायरेक्ट करते नजर आए हैं। पहले बात की जाए तो द बॉयज वाली यंग रिटेल एंटरटेनमेंट बताया गया था कहानी को, लेकिन अब कॉलेज दोस्ती लव और हार्ट ब्रेक के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। इंतजार रहेगा रिलीजिंग का, बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मायसेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। ओवर 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। सो हमारी डेली डाइट में न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल।

रूल है, अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत ज़रूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेज का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिंस एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर कॉलिंग।

सिनेमा का कैप्सूल। सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, जहाँ मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और OTT अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की OTT कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है, बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बिट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी OTT वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

0: है, और इस पापी मेट को ना पिज्जा बर्गर और गार्लिक ब्रेड तो चाहिए ही होती है, और हॉबी तो दिल, ये जो दिल है ना उसके अंदर बैठी हुई है हॉबी। तो भाई दोनों चीजें छोड़ी नहीं जा सकती, तो अब आपको करना क्या है? तो एक गोल्डन रूल है हमारे जितने भी कॉरपोरेट पगलूज है ना, अगर आप चाहते हो ना कि ये जो आपका दिली तमन्ना, ये जो आपकी हॉबी है वो जिंदा रहे, तो सबसे पहले ना अपने बॉस को इम्प्रेस कर दो। अगर आप गाना गाते हो ना तो बॉस को सुबह शाम जाके गाने सुनाओ। अगर आप डांस करते हो तो बॉस के सामने ठुमके लगाओ। और अगर आप पेंटिंग करते हो ना तो भाई सबसे बड़ी चीज बॉस का फेस पेंट कर दो। नहीं, बॉस का फेस पेंट नहीं करना, कैनवस पे भाई। तो देखिए भाई, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सोशल स्यापा आज का लेकर आ गई। तो आज का स्यापा ना हमें ये बताता है, कि आप किस तरह से अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो। तो भाई जिस बंदे ने गोल्डन रूल्स बताया ना, उसने ये बताया कि अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने हॉबी को जिंदा रख सको ऑफिस में, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना काम स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि जब भी आपका बॉस आपको टारगेट करे ना तो आपके काम के ऊपर तो कतई ना कर पाए। और इसी के साथ आपको कम्प्लीट करना है आपका KRA और KPI, सो दैट कि आपका टारगेट, आपकी परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट हो और बॉस को ना कम्प्लेन करने का मौका ही ना मिले। जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ आई है ना, वो ये है कि अपना सिर्फ काम पूरा करो यार। अगर वो काम पूरा नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली यार बॉस गुस्सा करेगा। ये सेम ना उसी स्टूडेंट की तरह जो बेचारा बैक बेंचर है और अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते और एक्सपेक्ट करता है कि स्कूल में टॉप कर ले। तो भाई देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी हॉबीज को अगर जिंदा रखना है ना बॉस, अपना काम पूरा करो और साथ ही सुनते रहो ये ट्रैक।
1: Oops.

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: हे डार्लिंग, आंखों से

यहाँ दोस्तों बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से और बढ़िया कुछ कहानी के बारे में। जहाँ ओटी प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो ओटी प्लेटफॉर्म पर इस वक्त भारत भाग्य विधाता भी स्ट्रीम हो चुकी, जिनको आप देख सकते हैं कंगना रनौत की लीडिंग किरदारी। कॉकटेल का सीक्वल, जहां शायद कृति सेना और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे हैं होमी अंदाजानिया के डायरेक्शन में। अगली कहानी है आखिरी सवाल, लायंस गेट प्ले मेंटर शिष्य के टकराव वाली ड्रामा, जहां संजय दत्त और नवाजी चक्रवर्ती अपने किरदारों में सबके सामने। द टीचर्स का नेक्स्ट सीजन भी यहाँ पे स्ट्रीम हो चुका है, तो कौन बनेगा करोड़पति के अगले सीजन भी लुत्फ उठाई प्लेटफॉर्म पर। इन सारी कहानियों का बाकी ऐसी चर्चा होती रही है, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट।

टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रहे हैं प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ हैं अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम। इसकी रिलीज डेट सामने आ चुकी है कि 16 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। बात की जाए 26/11 के हमले के दौरान जो भूमिका निभाई एक वकील साहब ने, नाम था उज्ज्वल जैन, उनकी बायोपिक आ रही है सामने। राजकुमार राव उज्ज्वल निकम के किरदार में, तो वहीं साथ में भूमिका गब्बे, सिकंदर खेर, जयदीप अहलावत और ललित प्रभाकर भी होने वाले हैं। अविनाश अरुण इस कहानी का डायरेक्शन प्रोडक्शन संभाल रहे हैं, जहां कहानी को अगस्त में रिलीज किया जाने वाला था लेकिन अब अक्टूबर फाइनल डेट अनाउंस की गई। देखा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब होगा जस्टिस का प्रहार। नई डेट कंफर्म करने के बाद से अब चर्चाएं हैं कि इसको कुछ चीजें जो कि जिनको रीमेकिंग करना है उस वजह से इसको रिलीज डेट चेंज की गई है। रहेगा इंतजार रिलीजिंग का, बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक दे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

कई लोगों में ना एक चुल होती है और वो चुल ये है कि उनसे अपनी हॉबी भी नहीं छोड़ी जाती और जॉब भी नहीं छोड़ी जाती। जॉब करनी इसलिए बिकॉज भाई ये गरीबी है, ये पापी पेट का सवाल है और इस पापी पेट को ना पिज्जा बर्गर और गार्लिक ब्रेड तो चाहिए ही होती है। और हॉबी तो दिल, ये जो दिल है ना उसके अंदर बैठी हुई है हॉबी। तो भाई दोनों चीजें छोड़ी नहीं जा सकती, तो अब आपको करना क्या है? तो एक गोल्डन रूल है हमारे जितने भी कॉर्पोरेट पगलूज है ना, अगर आप चाहते हो ना कि ये जो आपका दिली तमन्ना, ये जो आपकी हॉबी है वो जिंदा रहे, तो सबसे पहले ना अपने बॉस को इम्प्रेस कर दो। अगर आप गाना गाते हो ना तो बॉस को सुबह शाम जाके गाने सुनाओ। अगर आप डांस करते हो तो बॉस के सामने ठुमके लगाओ। और अगर आप पेंटिंग करते हो ना तो भाई सबसे बड़ी चीज बॉस का फेस पेंट कर दो। नहीं, बॉस का फेस पेंट नहीं करना, कैनवस पे भाई। तो देखिए भाई एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सोशल स्यापा आजकल लेकर आ गई, तो आज का स्यापा हमें ये बताता है, ये हमें ये बताता है कि आप किस तरह से अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो। तो भाई जिस बंदे ने गोल्डन रूल्स बताया ना, उसने ये बताया कि अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने हॉबी को जिंदा रख सको ऑफिस में, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना काम स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि जब भी आपका बॉस आपको टारगेट करे ना तो आपके काम के ऊपर तो कतई ना कर पाए। और इसी के साथ आपको कंप्लीट करना है आपका KRA और KPI, सो दैट कि आपका टारगेट, आपकी परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट हो और बॉस को ना कंप्लेन करने का मौका ही ना मिले। जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ आई है ना, वो ये है कि आप ना सिर्फ काम पूरा करो यार, अगर वो काम पूरा नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली यार बॉस गुस्सा करेगा। ये सेम ना उसी स्टूडेंट की तरह जो बेचारा बैक बेंचर है और अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते और एक्सपेक्ट करता है कि स्कूल में टॉप कर ले। तो भाई देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी हॉबीज को अगर जिंदा रखना है ना बॉस, अपना काम पूरा करो और साथ ही सुनते रहो ये ट्रैक।

प्यार को न्या और सारी दुनिया में जाकी टोलिए तने जाट बरगा मिलेगा यार को न्या। और मैडम है दिन में शिफ्टा रात ने स्टूडियो में गावे मैंने तेरा जैसा देखा स्टार को न्या।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जरा आप मुस्कुराइए,
1: जरा आप मुस्कुराइए, जरा आप मुस्कुराइए।

वेस्टर्न साउंड और मॉडर्न अरेंजमेंट्स का भी खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था। कल्याण जी की अगर बात की जाए तो उनके कुछ फिल्में आज भी म्यूजिक लवर्स के दिल में कायम। डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, जॉनी मेरा नाम और सफर जैसी कहानियों में उनका म्यूजिक लोगों का दिल जीतता नजर है। उनके बारे में ऐसी और भी चर्चा करता रहूंगा।

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटाने लेकर के शो यानी कि फिल्म की फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं कल्याण जी के बारे में, जहाँ कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक से सजी फिल्मों के साथ कई ऐसे गाने जो यादगार बने हैं। कई के पान बनारस वाला और साथी रे पल पल दिल के पास नीले नीले अंबर पर जैसे गाने आज भी रेडियो और प्लेलिस्ट पर उतने ही एवरग्रीन है। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी को हिंदी फिल्म म्यूजिक में उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर भी मिला। कल्याण जी की सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि उनका म्यूजिक एक पर्टिकुलर जनरेशन तक लिमिटेड नहीं रहा। आज भी नए सिंगर्स और म्यूजिशियंस उनकी कॉम्पोजिशन को रिक्रिएट करते हैं और नए लिसनर्स उनके सॉन्ग को डिस्कवर। कल्याण जी के ये गाने, ये उनका म्यूजिक हमेशा दिलों में जिंदा रहने वाला। ऐसी और भी चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन आज दिन से मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। बातें तब तो सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज में मन नहीं रखता। वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे, हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट से मिले। डॉक्टर कॉलिंग।

हो चकाचक फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए।

हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला हाँ अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो।

0: लवर्स।
1: अच्छा एक काम करो, मंडे का नाम सुनते ही जो पहली फीलिंग आती है ना, वो मुझे बताओ मत, मैं गेस कर सकती हूँ। वीकेंड में दो दिन ऐसे निकलते हैं जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी, और मंडे सुबह से ऐसे सामने खड़ा होता है जैसे ईएमआई की डेट याद दिलाने आया हो। लेकिन चलो, मंडे को मंडे की तरह ट्रीट करेंगे तो मूड कैसे ठीक होगा। इसलिए दो बज गए हैं और अब ऑफिशियली द हैप्पी आवर्स का टाइम है। मैं हूँ आरजे पलक और 89.6 रेडियो महारानी पर अगले दो घंटे हम बस बातें करेंगे, कुछ फनी, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ट्रेंडिंग और बीच बीच में मेरी थोड़ी सी बकबक। और हाँ, अगर आपका मंडे ऑलरेडी इरिटेटिंग जा रहा है ना, तो मुझे मत ब्लेम करना, क्योंकि मैं तो मूड ठीक करने आई हूँ ना। तो चलिए शुरू करते हैं हैप्पी आवर्स को, लेकिन उससे पहले गाना हो जाए और गाने के बाद बताऊंगी कि आज मेरी जेंजी डिक्शनरी में क्या नया है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: हाँ जी गाइज किमें लगे साडा गाना लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एमपी थ्री दा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू।
1: यार मैं खुद जेंजी हूँ लेकिन कभी कभी ना मुझे भी लगता है कि मैं इनकी जनरेशन से थोड़ी सी आउट हो गई हूँ। क्यों बताती हूँ। कल मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी और उसने मुझे मैसेज किया कि KKRH, तो मैंने सोचा अगर ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही है तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में ही रिप्लाई दे देती हूँ। तो मैंने भी लिख दिया TB यानी कि तुझे ब्लॉक, और उसने तुरंत रिप्लाई किया कि TBMK यानी कि तुझसे पहले मैंने ब्लॉक कर दिया, और बस मैं ब्लॉक हो गई। मतलब ये क्या चल रहा है भाई, हर सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म। और सबसे फनी बात पता है क्या है, ये जेंसी इतने खाली हैं कि बस अपना टाइम फोड़ने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म निकाल लेते हैं, जबकि मुझे लगता है कि ये शॉर्ट फॉर्म्स तो बूढ़े लोगों को यूज करनी चाहिए क्योंकि उनके पास टाइम कम है। उनको ऐसे मैसेज करना चाहिए, JR यानी कि जीते रहो, MJ मेरी जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, और NM यानी कि निकल मेरे घर से अभी पहली फुर्सत में। पता नहीं क्या करके मानेगी ये जेंजी। अच्छा वैसे आपके पास भी कोई ऐसा जेंजी शॉर्ट फॉर्म हो जो मुझे डिकोड करना चाहिए तो 9654896896 पर कॉल या व्हाट्सएप करके बता देना। नंबर फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9654896896। चलिए वक्त हो गया है गाने का, गाने के बाद बताऊंगी कि आज इंटरनेट पे क्या नया कांड हुआ है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।
2: Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah.

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।

0: चीनी हो गई महंगी तो चाय कहाँ से आए, अब गरीब ही नहीं रहा तो उसकी हाय कहाँ से आए। आए हाय भाई, चीनी के दाम बढ़ने की बात चल रही है और मुझे तो लग रहा है कि चीनी नहीं हुई, चीनी ने वीआईपी ट्रीटमेंट मांग लिया है। अब सोचो, सुबह सुबह चाय बनाई, कप हाथ में लिया, पहला ही सिप लिया और मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी आपने इसमें चीनी कितनी डाली है, और मम्मी ने तुरंत बोल दिया कि मेरा जितना बजट था मैंने उतनी ही चीनी डाली है। अब आप सोच रहे हो कि चाय के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, मतलब बिना चीनी के चाय मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती भाई। और अगर जो बिना चीनी के चाय पीता है ना, वो मेरा दोस्त नहीं है भाई, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, और दोस्ती खत्म। क्योंकि चाय कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बस मिठाई बनाते वक्त याद आती है। चाय, खीर, हलवा, जलेबी, घर की आधी मिठास का जिम्मा तो इस बिचारी ने ले रखा है। अब अगर दाम ऐसे ही बढ़ते रहे ना, तो मुझे लग रहा है कि दिवाली पे मिठाई वाले भी बोलेंगे कि दीदी मिठाई ले जाओ, बस स्वीटनेस अपने हिसाब से इमेजिन कर लेना। वैसे मजाक अलग, लेकिन जब रोज की छोटी छोटी चीजों के दाम बढ़ते हैं ना, तो सीधा घर के बजट पर फर्क पड़ता है। चलिए अब एक गाना हो जाए, गाने के बाद मिलते हैं फिर वही चार लोग क्या कहेंगे में। चलिए, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।
1: प्ले, क्या बात है,

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

अच्छा एक बात सच सच बताओ कि आपने कितनी बार कुछ करना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके दिमाग में ये सबसे पहले आया होगा कि यार लोग क्या कहेंगे, नया कुछ ट्राई करना है लोग क्या कहेंगे, कुछ अलग पहनना है लोग क्या कहेंगे, अपने मन का करियर चूज करना है, फिर वही चार लोग दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि आपकी लाइफ में आप मेन करेक्टर हो, वो चार लोग नहीं। और फनी पार्ट पता है क्या है कि जिनके ओपिनियन के बारे में हम इतना सोचते हैं ना, वो खुद अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि शायद दो दिन बाद उन्हें याद ही नहीं रहेगा कि आपने किया क्या था। हाँ कुछ लोग बातें करेंगे, एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, फिर उनकी लाइफ में कोई और नया टॉपिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ उनके डर से अपनी लाइफ रोक दी तो रिग्रेट आपको होगा, उनको नहीं। तो जो करना है करो, जो बनना है बनो, बस अपनी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में मत देना। चलिए अब एक गाना हो जाए, गाने के बाद मिलते हैं पॉपकॉर्न अपडेट में। बॉलीवुड की एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ लेकिन कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी। कई लोगों में ना एक चुल होती है और वो चुल ये है कि उनसे अपनी हॉबी भी नहीं छोड़ी जाती और जॉब भी नहीं छोड़ी जाती। जॉब करनी इसलिए बिकॉज भाई ये गरीबी है, ये पापी पेट का सवाल है और इस पापी पेट को ना पिज्जा बर्गर और गार्लिक ब्रेड तो चाहिए ही होती है। और हॉबी तो दिल, ये जो दिल है ना उसके अंदर बैठी हुई है हॉबी, तो भाई दोनों चीजें छोड़ी नहीं जा सकती। तो अब आपको करना क्या है, तो एक गोल्डन रूल है हमारे जितने भी कॉर्पोरेट पगलूज है ना, अगर आप चाहते हो ना कि ये जो आपका दिली तमन्ना, ये जो आपकी हॉबी है वो जिंदा रहे, तो सबसे पहले ना अपने बॉस को इम्प्रेस कर दो। अगर आप गाना गाते हो ना तो बॉस को सुबह शाम जाके गाने सुनाओ। अगर आप डांस करते हो तो बॉस के सामने ठुमके लगाओ। और अगर आप पेंटिंग करते हो ना तो भाई सबसे बड़ी चीज बॉस का फेस पेंट कर दो। नहीं, बॉस का फेस पेंट नहीं करना, कैनवस पे भाई। तो देखिए भाई एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सोशल स्यापा आजकल लेकर आ गए, तो आज का स्यापा ना हमें ये बताता है, ये हमें ये बताता है कि आप किस तरह से अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो। तो भाई जिस बंदे ने गोल्डन रूल्स बताया ना, उसने ये बताया कि अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने हॉबी को जिंदा रख सको ऑफिस में, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना काम स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि जब भी आपका बॉस आपको टारगेट करे ना तो आपके काम के ऊपर तो कतई ना कर पाए। और इसी के साथ आपको कंप्लीट करना है आपका KRA और KPI, सो दैट कि आपका टारगेट, आपकी परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट हो और बॉस को ना कंप्लेन करने का मौका ही ना मिले। जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ आई है ना वो ये है कि अपना सिर्फ काम पूरा करो यार, अगर वो काम पूरा नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली यार बॉस गुस्सा करेगी। ये सेम ना उसी स्टूडेंट की तरह जो बेचारा बैक बेंचर है और अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते और एक्सपेक्ट करता है कि स्कूल में टॉप कर ले, तो भाई देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी हॉबीज को अगर जिंदा रखना है ना बॉस, अपना काम पूरा करो और साथ ही सुनते रहो ये ट्रैक। बेस्ट ऑफ अंजलि।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: वर्स।
1: बिग बॉस के घर में कौन जा रहा है भाई? ये सवाल अगस्त आते ही वैसे ही आ जाता है, जैसे वो गाना नहीं है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। बहुत बेसुरा गा रही हूँ मैं, लेकिन आप मेरी आवाज़ पे मत जाइए, मेरे इमोशंस पे जाइए। और इसी के साथ बात को आगे बढ़ाती हूँ कि इस बार बिग बॉस में एंट्रीज में से एक एंट्री का नाम काफ़ी हाईलाइट में आ रहा है, और वो नाम है यूट्यूबर ज़ैन सैफी का। सोशल मीडिया पर र्यूमर्स चल रहे हैं कि ज़ैन सैफी बिग बॉस 20 का पार्ट हो सकते हैं। रीजन, उनके एक रीसेंट व्लॉग में उन्होंने 100 दिन के लिए बैकपैक रेडी करने की बात की, और बस इंटरनेट ने अपनी डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली। फैंस ने कमेंट में कनेक्ट करना शुरू कर दिया कि भाई बिग बॉस जा रहे हो क्या? लेकिन ज़ैन सैफी ने खुद भी कहा है कि वो सलमान के शो में तभी जाएंगे जब उन्हें वहाँ जाने का कोई रीजन दिखे, और उनके लिए वो रीजन है भाईजान। जी हाँ, उन्होंने 5 सितंबर की फ्लाइट का भी मेंशन किया, लेकिन डेस्टिनेशन बताया है गोवा। तो फैंस का ये सवाल है कि गोवा वाली फ्लाइट बिग बॉस के घर कैसे पहुंचेगी? और सिर्फ ज़ैन सैफी ही नहीं, आशीष चंचलानी और रजत बेदी के नाम भी र्यूमर्स में आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ज़ैन सैफी की एंट्री कंफर्म नहीं है, तो भाई र्यूमर्स को ना र्यूमर्स ही रखना। बिग बॉस के घर का दरवाजा खुलेगा तो सच खुद सामने आ जाएगा। चलिए अब एक गाना हो जाए, गाने के बाद मिलते हैं स्टाइल स्टूडियो में, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: एक्सपर्ट्स।
1: एक बात बताओ, आपने कभी कोई आउटफिट सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर दूसरा इंसान वही पहने घूम रहा है, है ना? ऐसा ही होता है ना कि हम दूसरों को देख लेते हैं कि यार ये टॉप इस पे अच्छा लग रहा है तो हम भी यही ले लेते हैं, ये जीन्स इस पे अच्छी लग रही है तो हम भी यही जीन्स ले लेते हैं, पर फिर घर आते हैं, ट्राई करते हैं, मिरर में देखते हैं खुद को और उसके बाद रिग्रेट में आ जाते हैं, आपकी शक्ल बन जाती है। क्यों? फिर आप यही सोच रहे होते हैं कि ये कपड़ा उस पे तो अच्छा लग रहा था पर मैं इसमें अच्छा नहीं लग रहा। बस यहीं से फैशन और पर्सनल स्टाइल का डिफरेंस आ जाता है। हम अक्सर ट्रेंड देखते ही सोचते हैं कि ये ट्रेंड में है मुझे भी चाहिए, ओवरसाइज चल रहा है ले लिया, कोई पर्टिकुलर कलर ट्रेंड में है ले लिया, लेकिन स्टाइलिश दिखने का असली सीक्रेट ये नहीं है कि अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, असली सवाल है कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा। आपकी बॉडी है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका कंफर्ट है, ये सब मैटर करता है। फैशन तो हर कुछ महीने में बदल जाएगा लेकिन अपना स्टाइल डेवलप कर लिया ना तो वो आपके साथ चलेगा। तो अगली बार शॉपिंग करते हुए ट्रेंड से पहले खुद को देखो, क्योंकि कपड़े आपको पहनने हैं, इंस्टाग्राम पे वो चार लोगों को नहीं। चलिए अब एक गाना हो जाए, गाने के बाद मिलते हैं फरीदाबाद की गलियों में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पोल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: કેમ છો મજામાં? ને તો અત્યારે મારી પાસે સાથે કોણ છે નેક્સ્ટ? ભાભીજી
1: હેપી આવર્સ.
2: यार कभी कभी ना बस मन करता है कि फोन साइड में रखो, घर से निकलो और बिना किसी बड़े प्लान के कहीं चले जाओ. बस थोड़ा सा चेंज ऑफ सीन चाहिए होता है. और अगर ऐसा मूड फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हो तो आज की जगह नोट कर लेना जो मैं आपको बताने वाली हूँ. और वो जगह है फरीदाबाद में सूरज कुंड रोड पर वन भोज. एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचते ही सिटी वाली फील थोड़ी कम और नेचर वाली फील थोड़ी ज्यादा हो जाती है. यहाँ के मड हाउसेस, वुडन फर्नीचर, ग्रीनरी और प्योर देसी वाइब्स इस जगह को काफी डिफरेंट बनाते हैं. और आप चाहें तो यहाँ इको फ्रेंडली मड हाउस में स्टे भी कर सकते हैं, साथ साथ फूड भी ट्राई कर सकते हैं. तो अगली बार जब फैमिली या फ्रेंड बोले ना कि कुछ वीकेंड पे प्लान करते हैं घूमने का, तो ये जगह लिस्ट में डाल लेना. क्योंकि कभी कभी एक्सपेंसिव प्लान्स नहीं, बस एक अच्छी जगह और अपने लोग चाहिए होते हैं इंजॉय करने के लिए. चलिए बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी.

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: चीज नोटिस की है, आजकल हम सबके पास टाइम नहीं है, लेकिन फोन स्क्रॉल करने के लिए समहाउ टाइम निकल ही आता है। घर में सब साथ बैठे हैं, लेकिन एक का फोन चल रहा है, दूसरा रील देख रहा है, तीसरा किसी को रिप्लाई कर रहा है। कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान से बात करने के लिए हम पूरा दिन वेट करते थे, आज वही सामने बैठा है। हम उसके साथ बैठे तो हैं, लेकिन बात करने की जगह हम दोनों ही अपने अपने फोन में बिजी हैं। और कल इंस्टाग्राम चलाते चलाते मुझे एक रील मिली जिसमें मछली बोल रही है कि इंसान धरती की रानी है, मोबाइल उसकी जिंदगी है। थोड़ी फनी रील थी, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई बताई गई थी। फोन बुरा नहीं है यार, बस इतना जरूरी भी नहीं होना चाहिए कि अपने लोगों को ही समय देना भूल जाओ। तो आज एक छोटा सा काम करना, घर में किसी अपने के पास बैठना, फोन थोड़ी देर साइड में रखना और बस बातें करना। हो सकता है जिस कनेक्शन को हम नोटिफिकेशंस में ढूंढ रहे हैं ना, वो सामने ही बैठा हो। और इसी थॉट के साथ द हैप्पी आवर्स का आज का टाइम यहीं खत्म करते हैं। मैं हूँ आरजे बाला, कल फिर मिलूंगी, क्योंकि आज जाऊंगी तभी तो कल आऊंगी। तब तक ये गाना आपके लिए, सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है।

कई लोगों में ना एक चुल होती है और वो चुल ये है कि उनसे अपनी हॉबी भी नहीं छोड़ी जाती और जॉब भी नहीं छोड़ी जाती। जॉब करनी इसलिए बिकॉज भाई ये गरीबी है, ये पापी पेट का सवाल है और इस पापी पेट को ना पिज्जा बर्गर और गार्लिक ब्रेड तो चाहिए ही होती है। और हॉबी तो दिल, ये जो दिल है ना उसके अंदर बैठी हुई है हॉबी। तो भाई दोनों चीजें छोड़ी नहीं जा सकती, तो अब आपको करना क्या है? तो एक गोल्डन रूल है हमारे जितने भी कॉर्पोरेट पगलूज है ना, अगर आप चाहते हो ना कि ये जो आपका दिली तमन्ना, ये जो आपकी हॉबी है वो जिंदा रहे, तो सबसे पहले ना अपने बॉस को इम्प्रेस कर दो। अगर आप गाना गाते हो ना तो बॉस को सुबह शाम जाके गाने सुनाओ। अगर आप डांस करते हो तो बॉस के सामने ठुमके लगाओ। और अगर आप पेंटिंग करते हो ना तो भाई सबसे बड़ी चीज बॉस का फेस पेंट कर दो। नहीं, बॉस का फेस पेंट नहीं करना, कैनवस पे भाई। तो देखिए भाई, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सोशल स्यापा आजकल लेकर आ गई, तो आज का स्यापा हमें ये बताता है, ये हमें ये बताता है कि आप किस तरह से अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो। तो भाई जिस बंदे ने गोल्डन रूल्स बताया ना, उसने ये बताया कि अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने हॉबी को जिंदा रख सको ऑफिस में, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना काम स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि जब भी आपका बॉस आपको टारगेट करे ना तो आपके काम के ऊपर तो कतई ना कर पाए। और इसी के साथ आपको कम्प्लीट करना है आपका KRA और KPI, सो दैट कि आपका टारगेट, आपकी परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट हो और बॉस को ना कम्प्लेन करने का मौका ही ना मिले। जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ आई है ना, वो ये है कि अपना सिर्फ काम पूरा करो यार। अगर वो काम पूरा नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली यार बॉस गुस्सा करेगा। ये सेम ना उसी स्टूडेंट की तरह जो बेचारा बैक बेंचर है और अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते और एक्सपेक्ट करता है कि स्कूल में टॉप कर ले। तो भाई देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी हॉबीज को अगर जिंदा रखना है ना बॉस, अपना काम पूरा करो और साथ ही सुनते रहो ये ट्रैक।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है.

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुआ है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ?
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later.
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: देखो अगस्त का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें छुट्टी सबसे ज्यादा मिलती है, मगर आप लोग कहीं घूमने नहीं जा सकते क्योंकि खर्चे हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
1: गौरव तुषार
2: हमारे में सिर्फ लड़के इंक्लूड करे थे ना आपने, लड़कियों के नहीं होते भाई, भाई सब लड़कियों के नहीं होते, भाइयों के होते हैं।
0: बिल्कुल भाइयों के होते हैं। और इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक्चुअली वो होता क्या है, हमारी ना जेबें खाली होती है, वो पैसा ट्रांसफर होता है हमारे अकाउंट से, अकाउंट क्रेडिटेड टू सिस्टर्स अकाउंट, मतलब अमाउंट क्रेडिटेड टू सिस्टर्स अकाउंट। और ये हफ्ता है राखी वाला, मतलब अगले फ्राइडे को, जो कमिंग फ्राइडे अब, उस पर राखी है, रक्षाबंधन है। और अभी से ना प्रेशर है कि कितने रुपए दिए जाए। देखो 200 रुपए देते तो कम लगते हैं, 500 देते ज्यादा लग जाते हैं।
2: 200-500 में आपके वाले मान रहे हैं, हमारे वाले तो 1000-2000 से नीचे नहीं मानते भैया।
0: मेरी बहनें बहुत ज्यादा है ना भाई।
2: अच्छा,
0: फिर वो थोड़ा सा तरस खा जाती हैं, वो कहती हैं चलो यार 10 बहनों को देना, तो थोड़ा सा
2: कॉम्प्रोमाइज
0: हो जाता है।
2: पर मेरे यहाँ यही चलता है 2000-1000। नहीं नहीं बहनें उतनी है, 4-5 है, बट देना सबको उतना उतना पड़ता है, तो बजट हिल जाता है।
0: तो करीब करीब 10,000 रुपए मान के चलते हैं कि 10,000 रुपए खर्चा हो जाता है।
2: इसकी कोई EMI करेगा क्या?
0: इसकी EMI भी होनी चाहिए और इसका फाइनेंस अब मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद ना बैंक वाले लोन देना प्रोवाइड करना शुरू।
2: राखी लोन।
0: चलिए आप लोग बताइए आप लोगों का कितना खर्चा हो जाता है। नंबर हमारा 9654।
2: आगे मेरे को याद थोड़ी
0: 8968 96।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: गौरव तुषार
1: रेडियो के जीती जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
3: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
4: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
5: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रीलंका को अगर इंडिया के अगेंस्ट अब टेस्ट मैच जीतना है तो मेरे ख्याल से उन लोगों को वो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जो सब कुछ सिखा देती है कि नहीं तुषार?
1: मैं कह रहा हूँ वो ऐप मेरे को पहले तो आप फॉरवर्ड करो, मैं भी सीखूं थोड़ा बहुत उससे।
2: गौरव तुषार
3: रेडियो के जीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
0: रेडियो के जीटी आप सभी का स्वागत करते हैं रेडियो महारानी 89.6 पर,
1: और मैं हूं तुषार और मेरे साथ है गौरव। और क्या कह रहे थे, वो कौन सी ऐप थी जो सिखा दी थी सब कुछ?
0: बहुत कुछ सिखाती है वो और उसकी एड भी बहुत आती है। खैर उन सबको अभी साइड में रख देते हैं, वक्त है अभी इंडिया की टीम के बारे में बात करने का जो पिछले 10 साल से एक भी मैच नहीं आ रही अगेंस्ट श्रीलंका। टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, मुझे लगा कह रहे हैं वही इंडिया टीम है जो सबको सब कुछ सिखा देती है पिच पे।
0: हाँ, पिच पे बहुत कुछ सिखाया है। और बता दूँ तुझे कि 10 साल से एक भी मैच नहीं आया। 2015 में लास्ट मैच हारी थी किससे?
1: श्रीलंका के अगेंस्ट। और अब ये जो टेस्ट मैच के बारे में ऑफ माइक हम डिस्कस कर रहे थे,
0: मुझे लगता है कोई एक ऐसा प्लेयर है जो वापस आएगा तो कुछ ना कुछ धमाल मचा सकता है, और उस प्लेयर का नाम है
1: मलिंगा। भाई उसको ले आओ, मैगी जैसे बाल एक तो, उसके बाद
0: मेरे जैसे
1: मेरे जैसे भी चलो ठीक है। और पिच पे वो जो बॉल करते थे ना, वो जो एक्शन था वो कोई और बॉलर ला ही नहीं सकता।
0: नहीं, एक बॉलर और है अभी, वो खेल नहीं रहा है इस वाले मैच में, श्रीलंका की तरफ से ही बॉलिंग करता
1: है। लेकिन उसको भट्टा नहीं बोलते?
0: देखो हमारे कोच के हिसाब से भट्टा बोलते थे, बट जैसे ही मलिंगा आया ना फिर कोच भी शांत हो गए। कोच कहते नहीं फिर ये तो चालू ये कर सकते हो तुम लोग।
1: और ये कभी वो आया था ना, वो रुक के बॉल फेंकता था।
0: हाँ, वो शायद पाकिस्तान का था। पाकिस्तान का वो प्लेयर था और उसको फिर मना कर दिया गया बॉलिंग के लिए शायद, क्योंकि वो भी ऐसे लगता था उसका एक्शन भट्टा वाला है। खैर मैं अभी बात करना चाहता हूँ, अगर मलिंगा वापस आएगा तो फिर किंग कोहली भी तो वापस आएंगे, जो कि मलिंगा की बॉल पे फिर फ्लिक शॉट मार के चौका कन्वर्ट कर देंगे।
1: यार वो भी बढ़िया क्रिकेट टाइम था।
0: बिल्कुल, और ऐसे ही क्रिकेट के टाइम को और भी याद करेंगे। 23 तारीख से मैच शुरू होने वाला है, मगर उससे पहले गाना शुरू होने वाला है। तो रेडियो महारानी 9.6 पर धुरंधर 2 मूवी का एक मिक्स मैशअप आप सभी के लिए,
1: और हम है रेडियो के जीटी।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: गौरव तुषार
1: रेडियो केजीपी जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
4: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: आपको एक बात बताऊं?
1: बता।
0: कल हमारे फरीदाबाद में कुछ इतना स्पेशल होने वाला है ना, जिसके बारे में सारे फरीदाबाद वालों को तो पता होना ही होना चाहिए।
1: ऐसा क्या है?
2: गौरव तुषार रेडियो केजीपी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
1: बिल्कुल फुल ऑन धमाल। एंड ऐसा क्या है स्पेशल? रेडियो के जीटी तो स्पेशल है ही, मगर उसके अलावा क्या स्पेशल है?
0: देखिए, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणपति, इन सब की शॉपिंग आपको एक ही जगह करने मिल जाएगी कल।
1: कहाँ पे?
0: देखिए, मैं कह रहा हूँ, अब फेस्टिवल एग्जीबिशन लगने वाली है, वो भी अपने बाटा चौक के पास।
1: 23 अगस्त 2026 संडे का दिन, मंगलम गार्डन है बाटा चौक पे। और टाइमिंग क्या होने वाली है एक बार सारी पब्लिक को बता देते।
0: देखो, 1 बजे से लेके दोपहर के रात के 10 बजे तक आपको ये सारा कलेक्शन मिल जाएगा, जहाँ ज्वेलरी मिल जाएगी, एसेसरीज मिल जाएंगे, बैग्स मिल जाएंगे, होम डेकोर्स के सामान मिल जाएंगे, प्लस पूजा की पूरी सामग्री भी वहीं मिल जाएगी,
1: राखी मिल जाएगी, उसके अलावा जन्माष्टमी के जितने भी डेकोरेशन के आइटम्स है वो सब मिल जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण एंड गणपति जी की भी मूर्तियां आपको वहां से बहुत इजीली मिल जाएगी। बट उसके अलावा और भी काफी सारे अट्रैक्शंस हैं।
0: हाँ, जैसे वहां पर आपको लाइव म्यूजिक मिल जाएगा और वहां पर आपको गिफ्ट आइडियाज बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा फोटो स्पॉट्स हैं या फन एक्टिविटीज भी हैं।
1: और इसके अलावा एक चीज और है, जो लोग मूर्तिकार है, जो बहुत सारी चीजें बनाकर ला रहे हैं हैंडमेड, उनसे भी मिलने का मौका आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये मौका तो आपको गवाना नहीं चाहिए।
0: इतना कुछ मिल रहा है, कौन ही गवाएगा।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा रेडियो महारानी के गाने भी नहीं गवाने, क्योंकि गाने चलेंगे आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक। उन्हीं में से एक और गाना, हम है रेडियो के
0: जी टी,
1: यानी गौरव एंड
0: तुषार।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हाल फिलहाल में रियलिटी शो का मेला सा लग गया है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच छह छह रियलिटी शो।
1: गौरव तुषार, रेडियो केजीपी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: बिल्कुल हर पल फुल ऑन धमाल। एंड आई एम सो सॉरी तुषार, एकदम से मैंने जीटी चला दिया, और जीटी इसलिए चलाया ताकि लोगों को बता सके रेडियो के जीटी आप सभी के साथ हैं।
0: मैं एकदम से नहीं चलाया, मैं ओवर बोल जाता हूँ तो वो कभी कभी करना पड़ता है। कोई बात नहीं, देखो रियलिटी शोज की जब हम बात कर रहे थे ना, तो आपने खतरों खिलाड़ी देखा है कभी?
2: बिल्कुल देखा है,
0: वो चल रहा है वहीं पर। बिग बॉस आने के लिए कंटेस्टेंट की वो हो गई है, सिलेक्शन होना शुरू हो गया
2: है।
0: नहीं, उसमें लाइन नहीं लगती, वो तो खुद इन्वाइट करते हैं, हम लोग नहीं जा सकते खुद से। वो ऐसे भी शो होते हैं जहाँ वो खुद से नहीं बुलाते। इसके अलावा अगर आप करोगे तो हसल चालू हो चुका है, जहाँ पर लोग हसल कर रहे हैं एक रैप फॉर्म में जिताने के लिए। और अगर मैं डिजिटल पे बात करूंगा तो अभी थोड़े टाइम पहले लॉकअप गया था, तो अब वहां पर उन्होंने लेगेसी चालू कर दिया है। तो इतने सारे रियलिटी शो गए ना, तो कंफ्यूज हो जाओ क्या देखें क्या ना देखें। बट हाल फिलहाल मैं हसल देख रहा था। एक यूनिक बात बताऊं इस सीजन की, क्या है?
2: क्या है?
0: रीजनल लैंग्वेजेस में रैप
2: बहुत ज्यादा। ये तो मैंने सुना, मैंने तूने ही मेरे को भी दिखाया था शायद।
0: भोजपुरी, हरियाणवी, यूपी के फ्लेवर में, इसके अलावा राजस्थानी फ्लेवर में, अलग अलग फ्लेवर, आसाम मतलब माउंटेन्स मेलोडी भी आ रही है, आसाम से सॉन्ग्स आ रहे हैं, मेघालय से गाने आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, एक जो इंडियन कल्चर है वो आप उस रैप शो में देख सकते हो।
2: तो मतलब जो एक रैप शो अभी तक लोग सोचते थे कि हाँ इंग्लिश में ही रैप हो सकता है, वो चीज हटके थोड़ा डिफरेंट हो चुकी है, और इस बार हर स्टेट के डिफरेंट।
0: मुझे मजा आ रहा है भोजपुरी में रैप सुनने में।
2: मैं वही बोलने वाला था, भोजपुरी में रैप लाइक किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, बट वो बहुत ही अच्छा निकल के आया।
0: आपको किसी लैंग्वेज में करनी हो तो किसमें करोगे?
2: मैं अपने उत्तराखंड की लैंग्वेज में ही करना चाहूंगा, जो कि मुझे समझ आती है, बोलने में हिचकिचाहट होती है, बट कोई नहीं, मैं सीख लूंगा, फिर उसके बाद बोल भी दूंगा एक ना एक दिन।
0: और मैं यही इनसे पूछ रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे आके डीएम में बताइए, रेडियो महारानी के नाम से हम इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आपको किसी रीजनल लैंग्वेज में रैप सुनना हो तो कौन सी लैंग्वेज होगी?
2: बिल्कुल, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको रेडियो का गौरव और रेडियो का तुषार दोनों मिल जाएंगे रेडियो महारानी के पेज पर ही, तो आइए फॉलो कीजिए। और अभी दीजिए हम दोनों को इजाजत, निकलते हैं यहाँ से।
0: हाँ, वीकेंड है भैया, हमें भी चिल करना है।
2: बिल्कुल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एंड सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।
0: कुछ हटके।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

मैं जैसे डूबा डूबा डूबा सा तेरे बिन, और ये गाना था वो, क्या याद मुझे भी करती होगी वो। देखो वो याद करे ना करे, मगर एक है जो आपको हमेशा याद करते हैं और आपको याद भी दिलाते हैं कि आपकी फोन की EMI पेंडिंग है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सच है, आपको हमेशा याद भी दिलाएंगे वो बैंक वाले, EMI भर दो, EMI भर दो। और EMI पता किस चीज़ की? आईफोन की। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा महाराष्ट्र में जो हुआ है, मैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहता था, बट बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था वो। माता पिता और बच्चे तीनों के तीनों इस दुनिया में अब नहीं रहे, और कहा जा रहा है कि आईफोन की EMI नहीं भर पा रहे थे, मतलब वो लड़का आईफोन की EMI नहीं भर पा रहा था, उसके फादर ने मना कर दिया था EMI भरने से, तो ऐसा कदम उसने उठाया। खैर मैं आप सभी को बता दूं, इसके ऊपर एक रिसर्च भी आई है कि इंडिया में महंगे फ़ोनों की जो चाहत है ना वो बर्बाद कर रही है भारतीय परिवारों को। देखो मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, और अगर मान लेते हैं मेरे 10 दोस्त हैं ना, तो 8 के पास आईफोन है। आई डोंट नो व्हाई। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही अच्छे घर से, बिल्कुल रिच फैमिली से, नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। सबने EMI पे ले रखा है फ़ोन। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना महंगा फ़ोन लेना ही क्यों है। और इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आई जिसमें पिछले साल जनवरी से लेकर अगस्त तक हर 4 में से एक खरीदार क्रेडिट कार्ड EMI या फिर कैशबैक स्कीम से आईफोन खरीद रहा था। अब इसके अलावा आपको बताता हूँ, अभी सेल आने वाली है, दिवाली के आसपास सेल आएगी बहुत सारी जितने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, तो वो लोग आईफोन की रेट्स कम कर देंगे बट उसमें EMI ऑफर्स चला देंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, तो लोग ले भी लेते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए महंगे फ़ोन का कोई फ़ायदा नहीं है, सस्ता फ़ोन भी वही काम करेगा जो महंगा फ़ोन कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कुछ काम होता है उस फ़ोन से। अगर आपका फ़ोन से कोई काम नहीं है, सिर्फ कॉलिंग के लिए आप फ़ोन ले रहे हैं, तो आईफोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर चलाऊँगा आप लोगों के लिए ये गाने।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

क्या आप लोगों ने कभी सपने में लड़ाई होते हुए देखी है? मैंने तो बहुत बार देखी है। दिल लगाना मना था। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। और दिल लगाना मना था ये गाने का नाम था। एंड इसी के साथ साथ बता दूं आपको कि वक्त हो चुका है किस चीज का, वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। तो इस टाइम ऑलमोस्ट सपनों को डीकोड करते हैं हम लोग रोज की डेट पे। और अगर आप लोगों को दिखता है सपने में लड़ाई झगड़ा, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके अंदर स्ट्रेस है, डर भी है किसी चीज़ को, या फिर कोई विवाद चल रहा होगा मन में, ऐसा हो सकता है। खैर आपको बता दूं, मैंने रिसेंटली सपना देखा था जिसमें लड़ाई हो रही थी। मैं इस पर पहले ही बात कर चुका हूँ, बट ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है। अगर आप खुद को लड़ते हुए देखते हो ना, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर गुस्सा है या फिर मेंटल स्ट्रेस है जो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। और वैसे पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये भी होता है कि आपको ना आने वाले समय में मान सम्मान मिलने वाला है। कुछ पॉजिटिव भी होता है। अगर आप दो दूसरे लोगों को लड़ते हुए देख रहे हो ना सपने में, तो इसका मतलब है आपके आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। हो सकता है आपके ऑफिस में सब लोग टॉक्सिक होंगे आपको छोड़कर। और इसके अलावा आने वाले दिनों में कोई फालतू विवाद भी हो सकता है, तो उससे बच के रहना। एंड अगर आप दोस्तों में लड़ाई देखते हैं या फिर किसी नॉन इंसान में लड़ाई देखते हैं, तो फिर अपनों से झगड़ने का मतलब यही है कि असल ज़िंदगी में आप उन्हें लेकर थोड़ा फिक्र है, मतलब आपके मन में फिक्र है उनके लेके। और आप हो सकता है कि आपके और उनके बीच में कोई गलतफहमी चल रही हो। और अगर आप किसी स्ट्रेंजर को लड़ते हुए देखते हो या फिर स्ट्रेंजर से आपकी लड़ाई होती है, तो इसका मतलब है कोई बड़ी चुनौती आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई चैलेंज आने वाला है या फिर कोई चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये तो था जी आज का क्विक सपना डीकोड, जो कि हम लोग रोज डेली बेसिस पे करते हैं मंडे टू फ्राइडे। एंड अगर आप लोगों ने भी कोई सपना देखा है जिसका मतलब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर गाना चला रहा हूँ, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है इसको थोड़ा लाउड कर देंगे।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

कल मैच देखा आप लोगों ने? मतलब इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच कल से शुरू हो चुका है और ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग होने वाला है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो, जैसे फरीदाबाद में बारिश हो रही है ना, वैसे ही बारिश हुई कहां पर? श्रीलंका में। और श्रीलंका में बारिश ने अभी सब कुछ रोक दिया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड स्टार्टिंग वाले दिन ही क्या हुआ पता आपको? कल लड़ाई हो गई असिता की और साथ में यशस्वी की, मतलब इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। और पता क्या, असिता फर्नांडो ये बंदे का नाम है, इस बंदे की लड़ाई हुई थी यशस्वी जायसवाल से और इसी ने बोल्ड मारा है। बोल्ड नहीं मतलब विकेट लिए है, जो भी है बोल्ड मारा शायद, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर इट, बट हाँ यशस्वी जायसवाल को इसी ने आउट करा। खैर बता दूं आपको, टीम इंडिया काफ़ी अच्छा खेली जिसमें देवदत्त पड़िकल 117 रन बनाकर आउट हुए। और वहीं पर शुभमन गिल की भी तारीफ करनी पड़ेगी कप्तान साहब की, क्योंकि 50 रन उन्होंने भी मारे। ऋषभ पंत वन एंड ओनली बैट्समैन विद 2 सिक्सेस भाई 6 चौके 2 छक्कों के साथ 63 रन बनाए ऋषभ पंत ने। वहीं पर अभी ध्रुव जुरैल अभी भी बैटिंग कर रहे हैं 9 चौकों के साथ 95 रन 155 बॉलों पर, और अभी टीम इंडिया पूरी तरह से आउट नहीं हुई है। बता दूं आपको, दूसरे दिन के एंड तक अभी तक 475 रन बन गए थे टीम इंडिया के। और इसके अलावा टीम इंडिया के बैट्समैन की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही अच्छी बैटिंग करी है। और अगर मैं फॉलो ऑफ विकेट्स की बात करूं तो सबसे पहली विकेट हमारी केएल राहुल साहब की गिरी थी और वो गिरी थी 37 रन पे। चलो अब रन गिनते, ठीक है, 37 पे पहली विकेट, 66 पे सेकंड, 186 पे तीसरी, 281 पे चौथी और 296 पे पांचवी, फिर 307 पे छठी, 419 पे अब सीधे 100 रन के बाद गिरी थी सातवीं विकेट, और फिर आठवीं विकेट गिरी 458 रन पे। तो ऑल ओवर ऑल टोटल टीम इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मगर वहां पर बॉलिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी असिता की, क्योंकि उस बंदे ने 25 ओवर डालने के बाद 4 विकेट ले ली और रन सिर्फ 78 ही दिए थे। तो ये थी जी सिमेट्री इन लोगों की, मगर अब चलेगा गाना सिमेट्री आप सभी के लिए रेडियो महारानी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

पता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन्नू दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: टॉक्सिक। अब इसके लिए लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, मगर फिर उसके बाद हुआ क्या? क्या हुआ? लोगों की उम्मीद पर पानी फिरा गया या फिर कुछ और ही सामने आया है? करते हैं इन सब चीजों के बारे में बात। डोंट वरी, मैं हूं ना
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: सुपरस्टार यश की अगर हम लोग बात करें तो उनकी फिल्म टॉक्सिक और एक्शन ड्रामा है ये, और कहा जा रहा है कि एक फेरी टेल फॉर ऑल द ग्रोन अप्स। अभी आपको बता दूं, इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इसमें सुपरस्टार यश डुअल रोल में है। सोचो भाई, एक ही अकेला तबाही मचा देता है तो डबल रोल क्या गजब की तबाही मचाएंगे। 26 तारीख को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है, यानी कि कल परसों रिलीज हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया। और फिर इसके लिए सब लोग तैयार है। हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम में ये मूवी आने वाली है। एडवांस बुकिंग ऑन हो चुकी है अभी से, और कुछ लोग तो अभी से बुक भी करवा चुके हैं। खैर, डुअल रोल है इसमें हमारे यश का, उनके दो मतलब पिता और बेटा, ये रोल निभाया उन्होंने। और एक गोवा में पोर्चुगीज रूल जब खत्म हुआ, फिर उसके बाद कैसे कैसे अंडरवर्ल्ड में घुसे वो, ये सब चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि क्या ये फिल्म KGF जैसी हिट हो पाएगी या फिर नहीं। और KGF की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि KGF पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ स्लो मोशन थे, थोड़े बहुत मारपीट के सीन्स थे और फिर स्लो मोशन थे मतलब स्लो मोशन वाले सीन इतने सारे डाल दिए कि मुझे लगा यार ये फिल्म स्लो मोशन में ही चल रही है। तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे KGF 1 तो बहुत पसंद आई थी, 2 बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो क्या पता हमारी जो फिल्म आ रही टॉक्सिक वो पसंद आए या फिर ना आए, ये तो वक्त ही बताएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी से मैं लेता हूँ इजाज़त, मतलब कहीं नहीं जा रहा, आप लोगों के लिए गाने चला रहा हूँ। तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। अभी टाइम ही क्या हुआ, अभी तो 7 भी नहीं बजे, तो 7 बजेंगे, फिर उसके बाद 8 भी बजेंगे, 9 बजे तक मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। फिलहाल सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। Yeah.

0: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

क्या आपको पता है कि अब दिल्ली भी अनस्टॉपेबल होने वाली है और ये टाइम बहुत जल्दी होगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आप सभी को बता दूं, आरजे गौरव आप सभी के साथ है। ये नहीं बता रहा, मतलब मेन चीज जो बतानी है वो ये है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047, हाँ 2047, 20 साल बाद, आज से 21 साल बाद बोल लेते हैं, मगर क्या पता 2021, मतलब 21 से पहले ही हो जाएगा ये सब चीज़ें। 24 घंटे वाला चलने वाला शहर बन जाएगा दिल्ली, और दिल्ली का मास्टर प्लान यही है, 24/7 चलेगी ये सिटी। मतलब कि 24 घंटे दिल्ली मेट्रो भी चलेगी, 24 घंटे बसेस भी चलेंगी, 24 घंटे और भी सारी चीज़ें रहेगी। बेसिकली इसका मेन लक्ष्य ये है कि दिल्ली में लाइफस्टाइल और नाइट लाइफ को बढ़ावा देना है, और इसके साथ साथ जितनी भी लोकल अर्थव्यवस्था है, जितनी लोकल इकोनॉमी है, उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये प्लान अभी किया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि साल 2047 तक तो पूरी तरह से ये चीज़ कम्प्लीटली एक्टिव हो जाएगी। अब देखते हैं, साल 2047 तो यार 20 साल है, बट 20 साल भी कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि सच सच बताऊं 6 साल पहले लॉकडाउन हुआ था। लग रहा आपको 6 साल बीत गए? नहीं ना, ऐसे ही ये 20 साल भी बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। खैर मैं आप सभी को बता दूं, जस्ट इमेजिन 24/7 चल रही है दिल्ली, और दिल्ली के सटा हुआ है फरीदाबाद। हम लोग फरीदाबाद से दिल्ली जाएंगे, और 24/7 दिल्ली मेट्रो चलेगी तो फरीदाबाद में भी चलेगी ही चलेगी, क्योंकि वो भी तो दिल्ली मेट्रो है ना ब्रो। तो दिल्ली मेट्रो अगर 24/7 चलेगी तो फिर दुकानें भी 24/7 चलेगी, और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्टिव हो जाएंगी, देश कुछ डिफरेंट ही लगेगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना इमरान हाशमी की मूवी से, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मेरा डोला नहीं आया। डोला जिम जाओगे तो डोला भी आ जाएगा, और बारिश का कोई अनुमान नहीं था मगर वो भी आ गई। तो ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा लाइफ में, आप बस पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और रेडियो का गौरव तो ये भी कह रहा है कि अगले चार दिन अब गर्मी देखने को मिलने वाली है आप लोगों को। ऐसा मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, खुद से मन से बना के नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा है मौसम विभाग। अब मौसम विभाग ने तो ये भी बोला था कि आज बारिश नहीं होगी। सुबह सुबह मैं उठा, देखा बादल है। अब बादल थे तो फिर उसके बाद बाहर उमस भी थी, और उमस सच में बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद बारिश शुरू हुई अराउंड 10:30 बजे। हाँ, 10:30 बजे बारिश शुरू होती है। पहले एकदम से बहुत तेज़ हुई, फिर रुक गई, फिर बहुत तेज़ हुई, फिर रुकी, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चलती गई, चलती गई, चलती गई। एंड ये 3-4 बजे तक तो थी। उसके बाद अभी मैं अंदर, जब तक स्टूडियो के अंदर बैठा हूँ तब से मुझे पता नहीं है बाहर का माहौल कैसा है, बट मौसम विभाग कह रहा है कि बाहर इस टाइम सिर्फ बादल है, बारिश नहीं हो रही। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि देखो, आने वाले दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ कल बारिश दिखेगी, और इस बार आपका रक्षाबंधन बिल्कुल सूखा जाने वाला है, मतलब रक्षाबंधन वाले दिन बारिश नहीं होगी। यही तो हम लोग प्रे करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर रक्षाबंधन सभी को याद होगा कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी और कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। वो तो शुक्र है उस दिन किसी का स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस नहीं था, नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते इस बारिश में। तो बस यही प्रे करते हैं कि बारिश अच्छी सी होती रहे। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाने भी बढ़िया बढ़िया चलते रहे। सुनिए इस गाने को जो बैकग्राउंड में बज रहा है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी लाउड कर दी जाए।

0: हमेशा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जाए। सुन

क्या प्यारा गाना था ना, और इतने प्यारे मौसम में ऐसे प्यारे प्यारे गाने चलते रहे तो मजा सा ही आ जाता है। उडारिया था इस गाने का नाम, और रेडियो महारानी 9.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जिस हिसाब से बारिश होती है ना फरीदाबाद में, बारिश तो कम हुई है इस बार, बट पानी बराबर भरा है। और जैसे ही बारिश होती है तो मैं ये सोचता हूँ कि बारिश हो रही है, सड़क पे चलूँ या फिर बोट बुक कर दूँ, समझ नहीं आ रहा। तो सेगमेंट का नाम है क्या हाल है, और क्या हाल है, मैं फरीदाबाद की बारिश के बारे में बात करना चाह रहे हैं। किसी से पूछो क्या हाल है, वो बोलेंगे नीलम चौक से निकला था बारिश के बाद, लग रहा है GPS नहीं लाइफ गार्ड चाहिए मुझे, क्योंकि फरीदाबाद में बारिश आते ही ट्रैफिक जैम नहीं होता, पूरा शहर वाटर लेवल अपडेट देने लग जाता है। ये तो होता ही है। खैर, किसी से पूछो क्या हाल है, फरीदाबाद वालों से पूछो क्या हाल है बारिश के टाइम पे, तो यही बोलेंगे अजरौंदा चौक का हाल मत पूछ, गाड़ी का टायर रोड पे नहीं, मतलब रोड पे या पानी में, ये भी नहीं पता चल रहा। और इसके अलावा बारिश के बाद फरीदाबाद की रोड्स पे पॉट होल्स नहीं होते, सरप्राइज पैकेजेस होते हैं ब्रो, क्योंकि कहाँ गड्ढा है किसी को कुछ नहीं मालूम। और अगर किसी से पूछो फरीदाबाद वालों से कि क्या हाल है बारिश में, तो वो बोलेंगे बाटा चौक पहुंचा था बारिश में, ऐसा लगा बाटा नहीं गोवा जा रहा हूँ, क्योंकि हर तरफ पानी पानी रे, पानी पानी हो जाता हर तरफ। खैर, इसके अलावा किसी से भी पूछो क्या हाल है, वो बोलेंगे बड़खल चौक पे बारिश के बाद इतना पानी है कि नाम ही चेंज कर दो, बड़खल लेक 2.0। दैट वाज अमेजिंग। देखो, अपने दिल से लिखा है, कोई चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा अगर कभी भी किसी से भी पूछ लो क्या हाल है बारिश के टाइम पे, तो वो यही बोलेंगे ऑफिस जाने निकला था बारिश के बाद, मम्मी बोली बेटा टिफिन ले जा, मैंने बोला मम्मी लाइफ जैकेट भी रख दो। क्योंकि पानी जब भरता ना ओल्ड अंडरपास पे, फिर उसके बाद ऐसे लगता है लाइफ जैकेट तो साथ में रखनी चाहिए। खैर, किसी से पूछो क्या हाल है फरीदाबाद की बारिश में, तो वो यही बोलेंगे कि फरीदाबाद की बारिश का सीन ही अलग है, 20 मिनट बारिश होगी और 2 घंटे का ट्रैफिक जाम लगेगा। ये तो होता है। और किसी से पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा भाई सब बढ़िया है, बस फरीदाबाद में बारिश के बाद रोड कम और एडवेंचर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, ये था आज का क्या हाल है। अगर आप भी करना चाहते हैं किसी और चीज़ के बारे में बात, आप भी पूछना चाहते हैं क्या हाल है, तो कर सकते हैं मुझे मैसेज, नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: क्या आपको पता है बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो कि विदेशी गानों से लिए गए और चेंज कर दिए गए।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव इन द हाउस। एंड वक्त हो चुका है इस टाइम म्यूजिक डीकोड करने का, एंड म्यूजिक डीकोड करने बैठ गए हैं हम लोग। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, सुना ये गाना, बहुत ही अमेजिंग गाना ना, छाया मूवी का 1961 का, और तलत महमूद और साथ में लता मंगेशकर की आवाज़ में, और संगीत सलिल चौधरी जी ने लिखे थे, और मतलब बोल जो लिखे थे वो राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। मगर ये गाना भी कॉपीड है और मुझे बहुत बाद में पता चला। एक्चुअली मैं तलत महमूद इसको बचपन में सुना करते थे, ये एक सिम्फनी थी, सिम्फनी नंबर 40, और उसको बचपन से सुनते हुए आए थे ये, और फिर उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अच्छा गाना बना डाला, सिम्फनी से ये म्यूज़िक बनाया। और हमारे जो राइटर थे इस गाने के, जिनका नाम है राजेंद्र कृष्णन, इन्होंने बहुत ही अच्छे से पिरोया है इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। क्या गजब की लाइन है ना, मतलब खुद दूसरे को वॉर्न कर रहे हैं कि प्लीज़ आप मुझसे प्यार मत बढ़ाइए क्योंकि मैं तो बेघर हूँ, मैं तो आवारा हूँ। क्या गजब की लाइनें लिखी है। इसमें एक लाइन आती है जो लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है कि इसलिए मैं तुझसे प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, ना है नाम मेरा जल की धारा। मतलब बादल और जल सब कुछ मिला दिया साथ में। और इस लाइन, इस गाने में ना एक लाइन और आती है, वो लास्ट में आती है, वो आता है इस वास्ते तुझसे प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, बन के किसी का सहारा, तूने दिया मुझको सहारा। मतलब यार क्या गजब की लाइनें लिखी है। और ये है कि बस दो लोग एक दूसरे को बस समझा रहे हैं, लड़का समझा रहा है कि तुम मुझसे प्यार मत करो, मैं इस लायक हूँ ही नहीं, मगर लड़की कह रही नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो एक प्यार को दिखाया गया इस गाने के ज़रिए। तो ये था आज का म्यूज़िक डीकोड, बेसिकली सॉन्ग डीकोड जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप लोग अगला डीकोड किसके बारे में चाहते हैं आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। और जब गाने की बात कर ही दी है तो सोच रहा हूँ चला ही दूँ आप लोगों के लिए। इतना ना मुझसे तो मेरी आवाज़ में अच्छा नहीं लगेगा, तो सुनिए इसको ओरिजिनल आवाज़ में।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है, मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज़ में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है, वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको, और ज़्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: कभी भी तो आप आपको बताइएगा।
1: आप नहीं बुला गया तो
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी का बंदा मैं तो फिर।

0: एक सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर के आसपास भी कचरा जमा है?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ आरजे गौरव, बता दिया वैसे तो। खैर, अभी जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ वो यही है कि फरीदाबाद में कचरा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है इस टाइम, एंड काफी सारे लोग इस चीज से परेशान हो गए। लोग कह रहे हैं यार हम क्या करें। आप बस इतना कर सकते हैं कि आप कूड़ा खुद से मत फैलाइए। उठाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, उठाने के लिए सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, उठा के जा रहे हैं, बट लोग पता है क्या कर रहे हैं, लोग उसी जगह पर फिर से दोबारा कचरा डाल के जा रहे हैं। निगम ने एक बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पर कचरा फेंकने पर जुर्माना है 50,000 रुपए का, मगर पब्लिक नहीं मानने को तैयार। अब मैं आपको 2-3 ऐसे स्पॉट्स बताता हूँ जिस पर मैंने हर बार देखा है। सेक्टर 21 में एक शमशान घाट है, उसके बाहर वाला एरिया, वहाँ पर बार बार सफाई होती है और बार बार वहाँ पर कचरा मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें केसी रोड से, जब आप विद्युत जल भवन शायद उसकी तरफ जब मुड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कचरा मिलता है। फिर उसके बाद बांके बिहारी मंदिर है NID5 में, वहाँ के पास में भी कचरा आपको दिखाई दे जाएगा। और फिर उसके अलावा फरीदाबाद में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कचरा ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन साफ होता है, बट फिर से आपको वहाँ पर कचरा मिल जाएगा। तो देखो, निगम अपनी तरफ से सफाई कर रहा है, बट हम लोगों को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, हम लोगों को भी सफाई में योगदान देना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को कूड़ा नहीं फैलाना है, इस चीज़ का प्रण लेना पड़ेगा। और जो घर के बाहर गाड़ी आती है ना कचरा उठाने वाली, उन्हीं को अपना सारा कूड़ा दीजिए और वो ले जाएंगे, वो निस्तारण करेंगे उसका, और फिर उसके बाद हमारा फरीदाबाद स्वच्छ हो जाएगा। स्वच्छ रहेगा फरीदाबाद तो फिर स्वस्थ रहेगा फरीदाबाद। बस इतना ही कहूंगा, और इसी के साथ साथ आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोगों ने कभी सपने में लड़ाई होते हुए देखी है? मैंने तो बहुत बार देखी है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। और दिल लगाना मना था ये गाने का नाम था। एंड इसी के साथ साथ बता दूं आपको कि वक्त हो चुका है किस चीज का, वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। तो इस टाइम ऑलमोस्ट सपनों को डीकोड करते हैं हम लोग रोज की डेट पे। और अगर आप लोगों को दिखता है सपने में लड़ाई झगड़ा, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके अंदर स्ट्रेस है, डर भी है किसी चीज़ को, या फिर कोई विवाद चल रहा होगा मन में, ऐसा हो सकता है। खैर आपको बता दूं, मैंने रिसेंटली सपना देखा था जिसमें लड़ाई हो रही थी। मैं इस पर पहले ही बात कर चुका हूँ, बट ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है। अगर आप खुद को लड़ते हुए देखते हो ना, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर गुस्सा है या फिर मेंटल स्ट्रेस है जो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। और वैसे पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये भी होता है कि आपको ना आने वाले समय में मान सम्मान मिलने वाला है। कुछ पॉजिटिव भी होता है। अगर आप दो दूसरे लोगों को लड़ते हुए देख रहे हो ना सपने में, तो इसका मतलब है आपके आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। हो सकता है आपके ऑफिस में सब लोग टॉक्सिक होंगे आपको छोड़कर। और इसके अलावा आने वाले दिनों में कोई फालतू विवाद भी हो सकता है, तो उससे बच के रहना। एंड अगर आप दोस्तों में लड़ाई देखते हैं या फिर किसी नॉन इंसान में लड़ाई देखते हैं, तो फिर अपनों से झगड़ने का मतलब यही है कि असल ज़िंदगी में आप उन्हें लेकर थोड़ा फिक्र है, मतलब आपके मन में फिक्र है उनके लेके। और आप हो सकता है कि आपके और उनके बीच में कोई गलतफहमी चल रही हो। और अगर आप किसी स्ट्रेंजर को लड़ते हुए देखते हो या फिर स्ट्रेंजर से आपकी लड़ाई होती है, तो इसका मतलब है कोई बड़ी चुनौती आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई चैलेंज आने वाला है या फिर कोई चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये तो था जी आज का क्विक सपना डीकोड, जो कि हम लोग रोज डेली बेसिस पे करते हैं मंडे टू फ्राइडे। एंड अगर आप लोगों ने भी कोई सपना देखा है जिसका मतलब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर गाना चला रहा हूँ, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है इसको थोड़ा लाउड कर देंगे।

0: तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मेरे उस दोस्त को जरूर ले आए जिम तक जो मेरे साथ गया था मेंबरशिप लेने के टाइम पर। पैसे तो उसने दे दिए बट आ नहीं रहा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। जिम ब्रो है आप सभी के साथ, आरजे गौरव, जिम ब्रो इक्वल है। मैं जिम भी जाता हूं तो जिम ब्रो भी हूं आपका। आपको कोई बेवजह की सलाह नहीं दूंगा बट हाँ, जो भी सलाह दूंगा हमेशा अच्छी ही दूंगा। खैर, अभी पता है क्या मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोग वर्कआउट तो कर रहे हैं और वर्कआउट के साथ साथ हम लोग क्या स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेचिंग, प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। इसको लोग कहते हैं, मतलब वर्कआउट से पहले वार्म अप और वर्कआउट के बाद कूल डाउन, इसको ऐसे भी कहते हैं। तो वार्म अप और कूल डाउन क्यों ज़रूरी है, तो इसको आपको सिंपल से तरीके से बता देता हूँ। देखो क्या होगा, आप एकदम से गाड़ी स्टार्ट करते हो, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत निकल जाते हैं। नहीं करना वो चीज़। गाड़ी जब स्टार्ट होती ना तो फिर इंजन ऑयल इंजन में घूमना शुरू होता है और फिर उसके बाद फ्यूल पहुंचता है इंजन तक। तो ऐसे ही आपकी बॉडी भी है, तो आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, मसल्स को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई लोड आने वाला है। तो वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वार्म अप में ऐसा नहीं कि सिर्फ दो बार हाथ हिला लिया बस हो गया वार्म अप, नहीं नहीं, 5 मिनट निकालिए वार्म अप के लिए। और फिर उसके बाद आप लोग जब वर्कआउट ख़त्म कर देते हैं तो फिर कूल डाउन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करेंगे, वर्कआउट कर लिए चलो जी घर चल रहे हैं, नहीं, पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, मसल्स में क्रैम्प आने के चांसेस कम हो जाएंगे और मसल इंजरी के भी चांसेस कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा हद तक। तो चलिए, ये थे मेरी आज की टिप आप सभी के लिए बीइंग अ जिम ब्रो। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, ब्राउन मंडे इस गाने का नाम, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

ये था एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक रमता जोगी एक्स रंगीलो मारो ढोलना। स्वागत है इसी गाने के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। रेडियो का गौरव आरजे गौरव। आई डोंट नो व्हाई बट ये अच्छा लगता है रेडियो का गौरव। और ये पता कैसे चला? ये चला एआई से, मतलब एआई से हम लोगों ने बनाया इसको और आप लोगों के सामने पेश कर दिया। खैर वक्त हो चुका है ऐसा कि मेरा यहाँ से जाने का टाइम है, बट मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। खैर ऑफिस से जाने का मन सबका करता है, बट मेरा आप लोगों से बात करने का मन ज़्यादा करता है। तो आज तो मैं लेता हूँ इजाज़त, मैं मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से सेम टाइम सेम जगह। बट आज का रिकैप कर लेते हैं जो मैंने बात करी थी आईफोन के बारे में। आपको था 4 में से 1 इंसान EMI पर आईफोन ले रहा है, बट मेरे 4 दोस्त हैं चारों के पास आईफोन है। मुझे लगता है चारों के चारों ने EMI पर लिया है क्योंकि मुझे उनकी सैलरी पता है, नहीं कर सकते वो लोग आईफोन अफोर्ड। उनके घर वाले भी नहीं दिलाने वाले। नहीं, घर वालों के पास पैसा बहुत है बट घर वाले दिलाएंगे नहीं उनको। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आईफोन का बुखार ऐसा चढ़ा हुआ है कि जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते वो भी EMI के चक्कर में इस फोन को ले रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ऐसी हरकतें अपनी लाइफ में ना करें जनाब, ना करें। और इसके अलावा रेलवे की चादर ओढ़ के 3 लोग घूमते दिखे थे, वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बारे में भी हमने बातचीत करी। तो सिविक सेंस की कमी है कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर, तो ये तो शायद आप लोग भी मानते होंगे। तो अब बस एक प्रण लेंगे हम लोग, आप और मैं, जो भी मुझे सुन रहा है इस टाइम, कि हम लोग ना गंदगी नहीं फैलाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ भी गलत ना करें। बस इतने से प्रण लेना है हम लोगों ने और देखिए सब कुछ चेंज होता हुआ आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, मिलते हैं आप सभी से कल शाम फिर से सेम टाइम 5 से 9। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वापस आएगी गीत विदेश की बाजियां, इश्क दी बाजियां, बाजियां नहीं इश्क बाजियां। सुनिए इस गाने को, सॉरी इस गाने का नाम है शेप ऑफ यू, एक्स उर्वशी, एक्स एड शीरन और बहुत सारे लोग हैं मिलके। सुनिए इस गाने को, बहुत ही अमेजिंग है। रेडियो महारानी 89.6 से ले रहा है आरजे गौरव विदाई। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।

0: कभी भी तो आप बोलना, आपको बताइए।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: नहीं, क्यों?
0: तो फिर हम

रात थोड़ी सी गहरी हो गई है, शहर की आवाजें थोड़ी कम है और शायद इसी वक्त दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई देती है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके और इसके सबसे खूबसूरत हिस्से इश्क शायराना में हम आज की रात मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शायर से जिनका नाम लेते ही मोहब्बत, उदासी, इंतजार और एक अजीब से बेबाकी सब एक साथ याद आने लगते हैं। नाम है अहमद फराज। फराज साहब ने बहुत ही कम उम्र में पोएट्री लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने उर्दू और पर्शियन में हायर स्टडीज की और अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत रेडियो के तौर पर की, यानी आवाज और अल्फाज से उनका रिश्ता सिर्फ एक शायर का नहीं था, वो आवाजों की दुनिया को समझने वाले इंसान भी थे। लेकिन फराज सिर्फ लव पोइट नहीं थे, उनके अंदर एक रिबेलियस आदमी भी था। शायद यही वजह है कि उनकी पोइट्री में मोहब्बत भी सिर्फ फूलों और चांद की कहानी नहीं, उसमें विरोध है, दर्द है, दूरी है, सवाल है और सबसे बड़ी बात अपनी बात कहने की हिम्मत है। और यही चीज मुझे फराज के सबसे करीब लगती है, क्योंकि हम भी तो आजकल दो ही तरह की जिंदगी जीते हैं, एक जो इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है और एक जो रात के इस वक्त अपने कमरे में अकेले बैठकर महसूस होती है। फराज उसी दूसरी जिंदगी के शायर हैं, वो उन फीलिंग्स के शायर हैं जिन्हें हम टाइप तो बहुत करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते। तो आज की रात थोड़ा वक्त फराज के नाम करते हैं, उनकी मोहब्बत को समझेंगे, उनकी नाराजगी को महसूस करेंगे और शायद उनकी कुछ बातों को भी, और शायद उनकी कुछ बातों में अपनी ही कोई कहानी मिल जाए। मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां और अब इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके मैं आपके साथ हूँ, आपकी इश्क वाली गीत शो है इश्क बाजियां, और ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना। अभी हमने जाना फराज को, उस आदमी को जो सिर्फ मोहब्बत का शायर नहीं था बल्कि अपने समय में बेचैनी को भी अपनी पोएट्री में जगह देता था। लेकिन अब जरा उस फराज के पास चलते हैं जिसे दुनिया ने सबसे ज्यादा प्यार किया, द रोमांटिक फराज। और फराज की मोहब्बत की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनकी मोहब्बत बहुत परफेक्ट नहीं थी, उसमें आर्ग्यूमेंट्स है, इंतजार है, इनसिक्योरिटी है, दूरी है, ईगो है, और कभी कभी वो एक्सेप्टेंस भी है कि शायद सामने वाला अब आपके साथ नहीं है, यानी बिल्कुल हमारी तरह। आज हम रिलेशनशिप में होते हुए भी कितनी ही बार अकेले होते हैं। एक इंसान ऑनलाइन होता है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल, मैसेज पढ़ लिया जाता है जवाब नहीं आता है, किसी का सीन पता होता है लेकिन लास्ट फीलिंग नहीं पता होती। और फराज शायद इसी सब ठीक है के पीछे वाली दरारों के पीछे के शायर है। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब जरा सोचिए कितना स्ट्रेंज है ना, हम वो लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद फोटोग्राफ्स डिलीट करते हैं, चैट आर्काइव करते हैं, अनफॉलो करते हैं, लेकिन मेमोरी को डिलीट करने का कोई बटन नहीं होता। कभी कभी कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है लेकिन आपकी लैंग्वेज में रह जाता है, किसी गाने में, किसी परफ्यूम में, किसी सड़क के मोड़ पर, किसी कैफे की टेबल पर, और सबसे ज्यादा रात के उन दो मिनटों में जब आप खुद से कहते हैं आई एम ओवर इट, और दिल बहुत कामली कहता है रियली। फराज की पोइट्री की यही खूबसूरती है, वो आपको लेक्चर नहीं देती कि प्यार क्या है, वो बस आपकी फीलिंग को नाम दे देती है। और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी फराज पुराने नहीं लगते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, रिलेशनशिप के नाम बदल गए हैं, डेटिंग एप्स आ गए हैं।

सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूं उन मूवीज, शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स, मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फंड ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। मैं हूं आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, जहां आज रात इश्क शायराना में हम बात कर रहे हैं अहमद फराज की। अब तक हमने फराज को एक रोमांटिक पोइट की तरह देखा, लेकिन फराज की मोहब्बत सिर्फ आई मिस यू वाली मोहब्बत नहीं है, उनकी पोइट्री में एक बहुत मैच्योर रियलाइजेशन भी है कि कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं खोते, हम उसके साथ अपनी बनाई हुई पूरी दुनिया को खो देते हैं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल चीज ये नहीं होती कि वो इंसान चला गया, सबसे मुश्किल होता है उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे रिचुअल्स भी चले जाते हैं। वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस, वो बिना मतलब की कॉल्स, वो घर पहुंचकर बताना, वो किसी पर्टिकुलर जगह से गुजरते हुए अचानक उसका याद आ जाना, और फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आप उस इंसान को नहीं, उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ करता था। फराज की एक और बहुत खूबसूरत लाइन है, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। बस यही तो है, किसी के चले जाने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ एक पर्सन नहीं था, वो आपका रूटीन था, आपकी उम्मीद था, आपकी छोटी छोटी खुशियों का विटनेस था। और शायद इसीलिए कुछ लोग जाते जाते भी नहीं जाते हैं, उनका नाम हमारी कन्वर्सेशन में नहीं आता लेकिन हमारी खामोशी में रह जाता है। और आज के टाइम में जहां हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करने के आदी हो चुके हैं, नया फोन, नई जॉब, नए कैफे, नई रिलेशनशिप, वहां फराज हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ याद दिलाते हैं, कुछ कनेक्शंस रिप्लेस नहीं होते, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। शायद क्लोजर का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ महसूस होना बंद हो जाए, क्लोजर शायद ये है कि एक दिन वही याद रह जाए और आपका दिल टूटे नहीं, बस थोड़ा सा आप मुस्कुरा दो। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, स्टे ट्यून।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी। मैं आपके साथ हूँ इश्क़वाली गीत। आज की रात हमने अहमद फराज साहब को सिर्फ एक पोइट की तरह नहीं बल्कि एक फीलिंग की तरह समझने की कोशिश की, एक ऐसे पोइट की तरह जिसकी पोइट्री में लव भी है, रिबेलियन भी है और लोनलीनेस भी है, जिसे हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। फराज की पोइट्री की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, वो आपको सिर्फ किसी और की याद नहीं दिलाते, कभी कभी वो आपको अपने खुद की याद दिलाते हैं, उस इंसान की जो कभी किसी के लिए बहुत खास हुआ करता था, उस रात की जब आपको लगा था कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा, उस गुडबाय की जिसे आपने सामने वाले से नहीं शायद खुद से कहा। फराज के यहाँ एक और खूबसूरत बात बार बार आती है, डिस्टेंस, आँख से दूर होना और दिल से उतर जाना दोनों एक बात नहीं है, और हमारे लिए इससे बड़ा रिलेशनशिप लेसन कुछ नहीं है। किसी को रोज देखना लव नहीं है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई आना लव नहीं है, हर फोटोग्राफ में साथ होना प्यार नहीं है। कभी कभी कोई इंसान हजारों माइल्स दूर होकर भी आपके सबसे करीब होता है, और कभी कभी कोई आपके सामने बैठा होता है लेकिन आप दोनों के बीच इतनी खामोशी होती है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया बीच में आ गई हो। वही फराज का मैजिक है, वो लव को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, वो उसकी कीमत भी जानते हैं, और शायद इसीलिए उनकी पोइट्री आज भी इतनी पर्सनल लगती है, क्योंकि हर किसी के पास एक फराज वाला रिश्ता है, कोई जिसे हमने चाहा, कोई जिसे हमने खोया, कोई जिसे हम आज भी याद करते हैं, या शायद कोई जिसे हम भूल जाने का नाटक करते हैं। तो अगर आज की रात फराज की किसी लाइन ने आपको किसी की याद दिलाई तो उसे तुरंत मैसेज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी को याद करना भी अपने आप में एक पूरा खत होता है जिसे भेजना जरूरी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, ये है रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां। तो आज की रात हमने की फराज साहब के नाम। अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि रेट्रो इश्क अभी बाकी है मेरे दोस्त।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ हैं अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहां दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहां शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 99.6 एफएम। कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लफ्ज कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चार्लेट की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहां ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहां हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है।

था सिचुएशनशिप और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए। आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे, और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलेसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत ज़रूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कम्प्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सब के सोर्सेज का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलेसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।

0: आंखों में ही रहना।
1: रेडियो महारानी कुछ हटके।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक दे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

0: बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।
1: रेडियो महारानी कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: लीसा को अजनबी चेहरे दिखने लगे। हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। एक भयानक साया उसके आसपास मंडराने लगा।
1: इस घर में कुछ है,

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद्।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है, आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, तो एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे, तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलु कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु।